0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी हैं कुशादा दामन दिल और जमीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर हैबत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है ये नुसरत बलोच।

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

101 FM

करीना तुझको सुनानी, सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून, दुनिया झूठी दुनिया वाले है थे, उनके बारे में मेरा है थे, I don't care what you think, what your emotions are, I'm gonna call it a spade is a spade, कैसे करे कोई ना सवाई, हर कोई समझ ला अपने को भाई, बाते ही बाते हैं, वो सारी बाते हैं, अंदर से को अपने तुझे को रोकते, क्यों नहीं ये अपने आप को ठोकते, आती है क्यों मैं पे मुझको हंसी, फिरते हैं दुनिया में जैसे आजाद है, पर अपने अंदर है सब slave.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101.

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुखलिस सालिस का किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म आसियान रीजनल फोरम के 33वें वज़ारती इजलास में पाकिस्तान के वफ्द की क़यादत के लिए मनीला पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दो तरफा माशी तआवुन को मजीद मुस्तहकम करने और अहम मनसूबों को फरोग देने के अज़्म का इरादा किया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की 19 साल से कम उम्र खवातीन टीमों के दरमियान 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 आज कराची में खेला जाएगा।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म आसियान रीजनल फोरम के वजारती इजलास में पाकिस्तान के वफद की क़यादत के लिए मनीला में हैं। वज़ीरे ख़ज़ाना ने वाशिंगटन DC में अमरीका की बैन अल-अक़वामी तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन के वफद से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में तआवुन पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और ईरान ने इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात के खात्मे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। 14 साल तालिबा मलाइका खिलजी सिलसिला कराकुरम की खोसर गंग चोटी सर करने वाली बलूचिस्तान की पहली खातून कोह पैमा बन गई हैं। खबरें तफसील से। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार आज से शुरू होने वाले आसियान रीजनल फोरम के 33वें वजारती इजलास में पाकिस्तान के वफद की क़यादत के लिए फिलिपाइन के शहर मनीला पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर फिलिपाइन के आला हुकाम और फिलिपाइन में पाकिस्तान की सफीर आसमा रब्बानी ने उनका इस्तकबाल किया।
1: This is FM.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

तमाम धड़कते दिलों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो मैं हाजिर हूँ विद द सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज।

तो आज जिनकी बर्थडे है उन्हें मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है।

जी आज है 22 जुलाई और ये जो दिन है ना आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है फॉर ब्रेन डेवलपमेंट और उसके लिए जो भी जो जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं लोग आजकल कितने ज़्यादा साइकेट्रिस्ट पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना एक आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना आप पेचीदगियों में पड़े रहते हैं उसकी अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जा रहा है।

So today is a World Brain Day और इस साल जो थीम है वो है ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल और ये हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन है एस्टेब्लिश्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी

इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है। आज तो लाहौर में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरों शोर से बारिश हो रही है, तो ज़रूर आज सबके घर में कुछ ऐसा ही बन रहा होगा जो आप बारिश में इंजॉय कर सके। जब बारिश होती है ना तो उसके ना एक मखसूस खाने होते हैं, है ना। आज पकौड़े बनेंगे, आज कढ़ी बनेगी, आज चिप्स बनेंगे, और चाय, चाय तो हम हर हालत में, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हर हालत में पी सकते हैं। तो आज मुझे यकीन है सबके घर में कुछ ऐसा ही बन रहा होगा जो सब बारिश में इंजॉय करना चाहते हैं। कुछ लोगों को सूप, जो बारिश जब होती है ना उसमें पीने का बहुत बहुत मज़ा आता है। तो आज आपके घर में क्या बन रहा है हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर करना है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज कुछ जबरदस्त डेस्टिनेशंस फॉर योर वेकेशंस। मजीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी। अभी आपकी स्मार्टफोन की नजर करने जा रही है एक जबरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। आज के जो प्रोग्राम की पोस्ट है हमारे ऑफिशियल एफएम 101 के पेज पे अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 11 बजे से 1 बजे तक। करने वाले हैं बहुत सी गपशप, कुछ आपकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे। अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जी, समर वेकेशंस जो है ना वो काफी हद तक जो है ना गुजर चुकी हैं, क्योंकि आज है 22 जुलाई और मैंने बहुत दफ़ा बात की है इस टॉपिक पे कि आपने इन ये वक्त जो है बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कुछ ना कुछ स्किल सीखें, किसी ना किसी स्पोर्ट्स में अपने आप को इंडल्ज करें। और आज आप सबने मेरे साथ शेयर करना है कि आपने कितना अमल किया और क्या क्या किया समर वेकेशंस में, और अगर कहीं घूमने फिरने गए तो उसके बारे में भी ज़रूर आपने शेयर करना है। बिकॉज टेकिंग योर वेकेशंस अपनी रूटीन से, जो डेली रूटीन है उससे गैप लेना, उसे हट के कहीं जाना, वो भी आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें, किसी भी जगह पे, हर ऑफिस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमेशा कुछ ना कुछ जो छुट्टियां हैं ना वो ज़रूर ग्रांट की जाती हैं, कि आपने इतनी छुट्टियां लेनी है ज़रूर। वो इसीलिए ग्रांट की जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अपनी कंपनी को स्मूथली रन करने के लिए ना वहाँ के लोगों को थोड़ा ऑफ देना, थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो आपके घर में खवातीन हैं, औरतें हैं, उनको भी गैप चाहिए होता है रोज़ का खाना बनाने से, रोज़ की रूटीन से। इसलिए ज़रूर अपनी फैमिली के साथ प्लान करें कि बाहर जाने का आने का, थोड़ी सी रूटीन हट के उनको भी रिलैक्स करने का मौका मिले। जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, खाना बनाए ना बनाए, आज तो 3-4 दिन रोज बाजार से खाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लंबी वेकेशन पे जाते हैं ना, 15-20 दिन जाते हैं मरी और हेल्थ साइज पे, तो वो खुद भी खाना बनाते हैं, वो भी एक एंजॉयमेंट का डिफरेंट लेवल होता है। तो आप कैसे अपनी वेकेशन को एंजॉय करते हैं, डू शेयर विद अस।

और इन समर वेकेशंस में ना आपने अपने बच्चों के करीब आने की कोशिश करनी है, उनसे दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आजकल डेवलप हो गई हैं ना, उनकी सबसे बड़ी वजह जो है आपस में जो घर वाले हैं उनकी ही एक दूसरे से दूरी है। तो जी आप हमें मैसेज कर सकते हैं एट 4471 पे, यू कैन ऑल्सो कॉल अस एट 1111001। यहाँ पे प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए बहुत जबरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101।

Welcome back. This is your host, Vijay Hasim. Program hai Ladies Lounge. और जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा साथ रहेगा एक बजे तक. और आज वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जा रहा है. हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन का जो मकसद है वो दिमाग की सेहत, असाबी बीमारियों और जहनी और जिस्मानी सेहत के बारे में आवाम में आगाही पैदा करना है. हमारा दिमाग जो है ना, हमारे जिस्म का एक नहायत अहम हिस्सा है जो सोचने, याद रखने, सीखने, जज्बात, हरकत और जिस्म के मुख्तलिफ अफाल को कंट्रोल करता है ना. क्योंकि देखिए, आपका ब्रेन ही है जो आपको सारी जो है ना, आपको जैसे हमें हमारी टीचर या प्रिंसिपल सारी इंटीमेशन देते हैं, सब बताते हैं ये करना है, वो करना है. सो ब्रेन इज़ द वन दैट्स टेलिंग अस कि आपने क्या करना है. कि अगर हमारे सेंसेस काम करते हैं, कुछ आपका हाथ लग गया किसी गर्म चीज़ को, तो आपको किस तरह मिनी सेकेंड से पता चल जाता है कि आपने अपना हाथ फौरन पीछे करना है. तो साथ साथ متوازن غذا, مناسب نیند, باقاعدہ ورزش, یہ سب چیزیں جو ہیں نا, یہ بہت بہت ضروری ہیں آپ کی برین, ہیلدی برین ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس دن بس ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو دماغ کی صحت کو نظر انداز نہیں کرنا ہے.

तो जैसे कि मैंने बात की कि आपने अपने बच्चों के भी करीब रहना है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट जो है ना सबसे ज़्यादा आपका होता है जब आप छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो तब आप में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में, तो डॉक्टर्स वगैरह सबसे पहले पूछते हैं आप क्या खाते थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे। वो आपका जो इलाज है आपके बचपन से शुरू करते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं हम आपकी केस हिस्ट्री लेंगे। इसलिए अपने बच्चों का जो है ना, उनके जो बचपन के दिन हैं, अर्ली डेज हैं, उन्हें हसीन बनाएं, खूबसूरत बनाएं, ताकि जब भी कोई भी जो है ना कोई हार्ड मोमेंट उनके साथ अटैच ना हो जाए, अगर हो भी जाए तो आप हमेशा वहाँ अवेलेबल हो उनसे शेयर करने के लिए। तो ये जो जिम्मेदारी ना सबसे ज़्यादा जाती है माओं के ऊपर, ठीक है ना, कि आपने बिल्कुल बच्चों से ना दोस्ती करके रखनी है। और साथ ही मैं आज शेयर करना चाहूँगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि गर्मी में ना जो ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला होता है ना कि हाउ टू मेक देयर मेकअप स्टे। सो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो होती है आपके मेकअप में बेस, वो है आपकी फाउंडेशन, कि वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, कैसे वो स्टे कर सकती है। क्योंकि जब पसीना आता है तो वो होता है ना कि सबको यही फिक्र होती है कि जी पसीने में मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो मेकअप करने से पहले आपने अगर कहीं जाना है तो आपने सबसे पहले कोई भी आइस क्यूब्स लेके, बर्फ़ लेके आपने अपने चेहरे पे आइसिंग करनी है। अगर आपको आइसिंग करना मुश्किल लगता है तो आप कोई भी जो चम्मच है स्टील का वो आप फ्रीज़र में रख दें, जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा ना तो उसको आप अपने चेहरे पर रब करें। उससे आपके जो स्किन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं, स्किन टाइटन अप हो जाती है। कहीं भी जाने से पहले, मेकअप करने से पहले आप अपने चेहरे की आइसिंग करेंगे तो यू विल सी अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। और जितने भी ब्राइडल मेकअप्स होते हैं ना सैलॉन्स में, या जो भी सैलॉन्स में मेकअप किए जाते हैं, वो लोग भी ये टिप एंड ट्रिक ज़रूर ज़रूर जो है ना अपनी ब्राइड्स पे अप्लाई करते हैं। और साथ ही आपने जो खीरा है ना उसके दो तीन हिस्से करके अपने फ्रीज़र में ज़रूर ज़रूर रखने हैं, जब वो अच्छी तरह फ्रीज़ हो जाएगा ना तो उसे भी आप लें और अपने चेहरे पे लगाएं। दिस इज़ द बेस्ट टिप टू मेक योर फाउंडेशन स्टे लॉन्गर। तो जी यहाँ पे मैं प्ले करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त ट्रैक, मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी आपसे आफ्टर दिस सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, दिस इज योर बॉस, योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज, आपका और मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। अगर आप अपनी आवाज प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 8111000101। अच्छा, फेसबुक पे हमें जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनके मैसेजेस साथ आप में शामिल कर लूँ। मंजूर सुल्तान ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं माशाल्लाह। आशिक खशखेली ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेज़बान साहब, उम्मीद तो खुश होंगे प्रोग्राम। नाचीज मोहम्मद अली जमाली, उन्होंने कुछ आई थिंक पश्तो और उर्दू में मिक्स करके कुछ मैसेज किया है, लेकिन आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान को जिन्होंने मैसेज किया है, कहते हैं वेलकम बैक मैम वजीहा, सुबह बखैर। थैंक यू वेरी मच। नज़ीर खुसरो ने हमें मैसेज किया है सोबेपुर बलोचिस्तान से, और रमज़ान को जो कहते हैं गुड मॉर्निंग लाहौर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर में तो आज ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और जो बारिश और पानी देखे ना सबका मूड खुशगवार हो जाता है। और मलिक मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और सुपर सुपर सुपर के प्यारे से इमोजीज भेजे हैं, थैंक्स अ लॉट। और रमज़ान को जो कहते हैं आदाब अर्ज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मलाफील हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गूंगे और एट टाइम गूंगे बहरे दोनों होना पड़ता है टाइम्स, ठीक है ना। और रमज़ान गुजर ने कहा है आई एम प्रेजेंट लिसनिंग टू सुपर हिट शो, थैंक यू वेरी वेरी मच। और रियाज भट्टी हमारे हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं नहायत शानदार, उन्होंने बहुत से लोगों को सलाम भेजा है, इकबाल मेहंदी, मलिक वसीम, अमान, मुनव्वर अब्बास, बहुत से रियाज भट्टी की तरफ से सलाम कहा है उन्होंने, ग्रेट शो कहते हैं आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद मैसेजेस में प्रोग्राम में आगे साथ साथ शामिल करती रहूँगी जी। तो ये होता है ना कि अक्सर जो माएँ होती हैं ना, जो ख़वातीन होती हैं, उन्होंने ज़्यादातर चीज़ें जो हैं समर वेकेशन में ही प्लान की होती हैं, क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि उनको थोड़ा सा अपनी नॉर्मल रूटीन से ना थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नानी घर जाना, और नानी घर से जुड़ी बहुत खूबसूरत यादें होती हैं सबकी, मामू खाला और अपने नानी नाना के साथ जो गुजरा वक्त होता है ना, वो हमेशा हमेशा सबको बहुत याद रहता है। तो इसलिए ख्वातीन ने जब अपना इतना आना जाना गर्मी की छुट्टियों में ही प्लान किया होता है ना, तो इसीलिए मैं आपके साथ कुछ मेकअप ट्रिक्स शेयर करी थी। तो ये अभी मैंने आपके साथ टिप शेयर की थी रिगार्डिंग योर फाउंडेशन, कि वो कैसे लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, कैसे ज़्यादा देर स्टे कर सकती है, ठीक है ना। और क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और डे मेकअप में आपने कभी भी लाउड कलर्स जो है ना वो आपने नहीं अप्लाई करने हैं, हमेशा जो रात का जो नाइट मेकअप होता है दैट्स डिफरेंट और डे मेकअप इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। तो जितने भी आना, और क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और डे मेकअप में आपने कभी भी लाउड कलर्स जो है ना वो आपने नहीं अप्लाई करने हैं, हमेशा जो रात का जो नाइट मेकअप होता है

सिर्फ पिंक के इर्द गिर्द ही रहना है, चाहे ब्लश ऑन हो, आपका आई शेडो हो, लिपस्टिक हो, अगर आप डे मेकअप कर रहे हैं तो। रेड, मरून्स, ब्राउन गर्मियों में स्पेशली हमेशा रात को अच्छे लगते हैं। इसके साथ साथ जिन खवातीन का चेहरा जो है गोल होता है, उन्हें चाहिए कि ज्यादातर जो है वो लंबे इयररिंग्स पहने, स्ट्राइप्स वाले कपड़े पहने, इससे उनकी एलोंगेटेड लुक आती है। और जो लोग बहुत पतले से होते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कुछ खाया पिया कर जान बनाया कर, तो कुछ लोग बहुत पतले कमज़ोर होते हैं, उनको चाहिए कि ज़्यादा आप जो स्ट्रेट लाइन स्ट्राइप्स वाले कपड़े हैं या फ्लोरल कपड़े हैं वो पहने, उससे आप इतने पतले कमज़ोर नहीं लगते। कि मुझे याद है जब मैं भी अपनी स्कूल और कॉलेज लाइफ में थी ना, तो सब मुझे कहते थे कि ना कुछ खाया करो, थोड़ी मोटी हो जाओ। मुझे हर टाइम ये लगता था कि मोटा होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमारी जो न्यू जनरेशन है उसमें अच्छी बात ये है कि उनको बहुत सी चीज़ों का पहले से ही पता होता है, और उन्हें बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ से पता चल रही होती है। और जो माएँ हैं ना, उनकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि उनको सही इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि जब तक बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे ना, तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, फिर आपको तब पता चलेगा जब कुछ ख़राब हो चुका होगा। इसलिए अगर आपके बच्चे थोड़े से वीक हैं, तो उनको हेल्दी डाइट क्या देनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर बच्चे वक्त से पहले ओवरवेट हो गए हैं, तो उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, सो यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देखिए, खुराक जो डाइट है, ठीक है, वो उसको लुक आफ्टर करना टोटली जो है ना माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उसमें हम कहते हैं कि जी जो घर के हस्बैंड हैं उनको भी हाथ बटाना चाहिए, उन्हें भी करना चाहिए, नो डाउट करना चाहिए, और हस्बैंड्स को भी घर की चीज़ों में इन्वॉल्व रखना, जो छोटे छोटे कामों में आपकी हेल्प करें, बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही आजकल जो हमारे जितने भी हमारे चैनल्स हैं, वहाँ पे जितने भी ड्रामे दिखाए जा रहे हैं, उसमें एक सबसे कॉमन चीज़ क्या है, दूसरी शादी। तो देखिए, जो आप चीज़ ज़्यादा देखते हैं ना, वो ही इर्द गिर्द हो रही होती है, या उसका इन्फ्लुएंस पहले से भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को और घर में जितने भी अफराद हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी जो आपके घर के काम है उसमें उन्हें इन्वॉल्व करें। वो आप तभी इन्वॉल्व कर पाएंगी जब आप चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएंगी।

जब कोई एक चीज़ है ना, जैसे अगर बच्चे आपके कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ बेकिंग करना चाह रहे हैं, कुछ डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं, अगर कॉफ़ी भी खुद बनाना चाह रहे हैं तो उन्हें बनाने दें, ठीक है ना। और कभी कभी घर के बड़ों को भी कह देना चाहिए कि आज चाय कॉफ़ी का काम आपके जिम्मे। जैसे आज हो रही है ज़बरदस्ती बारिश, तो आज बनेंगे सबके घर में पकौड़े। ऐसे काम भी मिलजुल के कर लेने चाहिए। तो काम कब कैसे हो जाता है, जब मिल के कोई काम करते हैं ना, तो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो जी अब बढ़ते हैं एक खूबसूरत गाने की तरफ। I'll be right back, stay tuned.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे विजय आसिम. इट्स 11:42 इन द स्टूडियोज. जी, और जहाँ पे मैं बनने संवरने की और तैयार होकर जाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो गर्मी की छुट्टियों में ना माओं ने और बच्चों ने अपने बहुत से प्लान्स बनाए होते हैं हस्बैंड्स के बगैर भी, ठीक है ना, नानी घर जाने के अलावा भी छोटे छोटे से बहुत से प्लान्स होते हैं, और ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी होता है. उसमें गर्मियों में अगर आप दिन में कहीं जा रहे हैं ना, तो आपने मिनिमल ज्वेलरी कैरी करनी है. ये नहीं होना चाहिए कि आपने दोनों हाथों में कुछ पहना हुआ है और झुमके वगैरह सब कुछ पहने हुए हैं. अगर आपने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, गो फॉर रेड, ठीक है ना. ज़रूरी नहीं है आपने ब्लैक कपड़ों के साथ हमेशा आपने ब्लैक जूते ही पहने हैं, सब कुछ ब्लैक ही कैरी करना है. अगर आप थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देना चाहते हैं, तो गो फॉर वाइट और ब्लैक और रेड, सॉरी, ब्लैक के साथ आपका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है ब्लैक, वाइट एंड रेड. येलो अगर आपने पहना है तो उसके साथ वाइट में आप जाएं. ये मैं दिन में बात कर रही हूँ, ठीक है. रात को जो है आप हमेशा डार्क कलर्स के लिए जाएं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि नियॉन कलर्स आर इन वेरी वेरी फैशन दीज डेज. ग्रीन, येलो जो है, और जो एक हल्का फिरोजी सा रंग होता है लाइट ब्लू टोन्स में, दैट्स लुकिंग अमेजिंग. टर्कोइस इज वेरी मच फैशन इन दीज डेज. एक तो होता है ना, अब बने बनाए कपड़े बाजार से ले लेते हैं जिसके साथ सब पैचेस वगैरह सब कुछ आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करें और थोड़े से कुछ आप चिकन पीसेज और लॉन पीसेज लें और खुद से कुछ क्रिएट करें. यू विल गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिजाइन ऑन सोशल मीडिया. तो देखिए, जब आप खुद से कुछ क्रिएट करते हैं ना, तो उसका मजा ही कुछ और होता है. लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि कैसे आप अपनी घर की दीवारों को कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं, कैसे खूबसूरत बना सकते हैं. तो इस दफ़ा मैंने सोचा आपसे आपको कपड़ों को खूबसूरत बनाने के बारे में बात करती हूँ. छोटे मोटे टसल्स, बटन्स, पर्ल्स. अब पर्ल्स की जो एक लड़ी है आपको बाजार से किसी भी बटन शॉप से बहुत सस्ती सी मिल जाती है, तो अपने कपड़ों में ऐड करें, दैट विल इन्हांस योर क्लॉथ्स अ लॉट. तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं आपके कपड़ों को बहुत अच्छा बना देती हैं, बहुत पैसे भी नहीं लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट जरूर लगता है अगर आप एफर्ट करने के लिए तैयार हैं. तो इसके साथ साथ बटर येलो कलर इज वेरी मच इन फैशन दीज डेज. तो बटर येलो कलर आपके पास इन समर्स में जरूर जरूर होना चाहिए.

और साथ ही देखें, जब अगर आप हमेशा अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करते हैं ना, देखिए उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डेवलप इन आवर चिल्ड्रन. क्योंकि हम तो है ना, हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा. इस वजह से बहुत सी चीज़ें हैं, हम डिसीजंस लेने से भी, कुछ करना तो दूर की बात, जो है आपने एक फैसला लेना होता है ना, जो डिसीजन करना होता है, वो भी लेने से हम घबरा रहे होते हैं. लेकिन हमें अपनी आने वाली जनरेशन में, अपने बच्चों में, अगर आपके घर में छोटे बहन भाई हैं, तो सब में आपने क्या पैदा करना है, कॉन्फिडेंस. इसलिए ज़रूर अगर आप बाजार से जो मिलते हैं ना डिजाइनर क्लोथ्स मिलते हैं, अगर आप वो भी ले लेते हैं तो नो प्रॉब्लम. लेकिन आप थोड़ा बहुत खुद से भी कुछ ज़रूर बनाएं, खुद से ज़रूर कुछ क्रिएट करें, कुछ डिफरेंट डिज़ाइनिंग ऑन योर ओन आप सबने ज़रूर करनी है. और जो भी खवातीन आज कॉल करेंगी, उन्होंने मुझे ज़रूर ज़रूर बताना है कि आपने कैसे अपने कपड़े बनाए इन गर्मियों में. थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टच ज़रूर ज़रूर देना चाहिए. एंड आई एम द वन जो हमेशा फैशन को, ट्रेंड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती. यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड. डोंट फॉलो द ब्रांड्स, यू आर अ ब्रांड योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को सही तरीके से कैरी करेंगे तो अपने अंदर आपने इतना कॉन्फिडेंस लेके आना है, अपने आप को आपने इस तरह रखना है. और इसलिए आपने ये नहीं सोचना कि अगर आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर देंगी तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे. अक्सर जो हमारी घरेलू खवातीन होती है ना, माएँ, अम्मियाँ, वो हमेशा यही सोचती रहती हैं कि साड़ी खैर है ना. तो यू हैव टू मेक योर सेल्फ अ ब्रांड. तो जी, मजीद गपशप आपके साथ चलती रहेगी. अभी यहाँ पे एक जबरदस्त सा ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए. कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM 101.

Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asim. प्रोग्राम है लेडीज लाउंज, आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 1 बजे तक।

taking your live calls after 12 o'clock. तो 12 बजे के बाद मैं आप सबकी लूंगी लाइव कॉल्स. बाद में लूंगी आप सबकी लाइव कॉल्स और आप हमें बता सकते हैं कि आपने आज घर में क्या बनाया है, क्योंकि इतनी अच्छी बारिश हो रही है और कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ जो है ना आपने ज़रूर शेयर करनी है. डिफरेंट रेसिपीज़ आप लोगों ने ज़रूर शेयर करनी है और हमें बताना भी है कि आपने क्या क्या क्या बनाया है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम. क्या कोई कसूरी नहीं होती, समर वेकेशन में बच्चे भी अक्सर लेट होते हैं और आपके पास टाइम होता है कि आप जो है ना नए नए एक्सपेरिमेंट्स करें. तो आपके किचन में आज क्या बना है,

दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथिर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और रूस के वज़ीर ख़ारिजा ने आज मनीला में मुलाकात में दो तरफा शराकत दारी आगे बढ़ाने के लिए आला सतह के मुसलसल राबतों की अहमियत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वाशिंगटन DC में अमरीका की बैन अल-अक़वामी तरक्याती मालियाती कॉरपोरेशन के वफ़द से मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में तआवुन पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान और ईरान ने इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात के खात्मे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। पंजाब हुकूमत ने देही खवातीन को मौशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए अपना मवेशी अपना ही रोजगार प्रोग्राम शुरू किया है।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: Turn it up and feel the vibe. It's time for the Ladies Lounge, where stories sparkle and music flows. Hosted by your favorite, Archie Fatiha Asim.

वेलकम बैक, प्रोग्राम है लेडीज लाउंज। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। हम निभाते हैं आपका साथ रास्तों में, फासलों में, आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंचाने में हम रहते हैं आपके साथ साथ। जब मौसम इतना खुशगवार हो और साथ ही एफएम 101 का साथ हो तो क्या ही बात है। तो जो बातें हैं ना उनको दिल में नहीं रखना चाहिए और जल्द ही शेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब बातें आपके दिल में रहती हैं ना तो यही जो है ना डेवलप करती हैं आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां, ठीक है ना। तो इसलिए कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसे आप कभी भी कुछ भी कह सकें। और जो खूबसूरत तो जो सबसे रिश्ता है ना मुझे लगता है दोस्ती का, ठीक है ना। और अगर वो दोस्ती मियाँ बीवी में हो तो क्या ही बात है, और अगर कम भी है तो अपने दोस्तों से थोड़ा अच्छी दोस्ती बना के रखो यार, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माँ बहन बेटे से नहीं कह सकते, ठीक है ना। अपने अब्बू से शेयर नहीं कर सकते तो आप दोस्तों के पास हर रोना धोना अपना रो सकते हो, ठीक है ना।

Kochi, NDMS अलर्ट 19 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक आपको बहुत अलर्ट रहना है, और साथ ही आपने NDMA डिज़ास्टर अलर्ट जो ऐप है उसको आपने ज़रूर डाउनलोड करना है और उसको आपने इस्तेमाल भी ज़रूर करना है। वहाँ पे सब जो नोटिफिकेशंस हैं साथ साथ आते रहेंगे, उनको आपने फॉलो करना है। और जो होता है ना, अक्सर लोग नहरों में नहाते हैं गर्मी की वजह से, वो आपने बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करना है इन दिनों में 23 जुलाई तक, ठीक है ना। आज है 22 जुलाई, 23 जुलाई तक आपने अवॉइड करना है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में अर्बन फील्डिंग अलर्ट का खतरा है, और आपने बहुत कॉन्शियस रहना है, अपने बच्चों को भी समझाना है, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि फिर हमें बहुत सी ऐसी न्यूज़ मिलती हैं कि बच्चे नदी नालों में गिर गए हैं, तो इसलिए उनकी हिफाजत जो है वालिदैन की जिम्मेदारी है। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में शदीद तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है, तो मरी साइड पे और वहाँ पे इस तरह के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ जाने से और वहाँ पे सफ़र करने से जितना हो सके गुरेज करें।

देखिए ये सब चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं आपकी सेफ्टी के लिए हैं, ताकि आपको महफूज रखा जा सके। देखिए छोटी छोटी सी एहतियाती तदाबीर हैं, अगर आप उन्हें अपनाएंगे तो देखें ये आपके ही लिए बेहतर है। तो कहीं भी नहरों में नहाने के लिए मत जाएं, क्योंकि बेशक आपको लग रहा होगा कि अभी कोई अभी बिल्कुल काम है, कोई इतना तूफ़ानी रेला नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता चलता। ऐसा जो है ना, जब भी कुछ देखें जब कुछ बुरा होना होता है ना तो अचानक होता है, ठीक है ना। कोई भी जो है ना बुरा वक्त बता के नहीं आता, ठीक है। तो हमें हर टाइम अलर्ट रहना है, कॉन्शियस रहना है, और आपने NDMA की जो ऐप है डाउनलोड करनी है, उसे ज़रूर इस्तेमाल करना है। जी तो हमारे साथ रब्ता करने के लिए नंबर है 1111001। रमजान गुजर ने हमें मैसेज किया है, बेस्ट शो हिट FM 101, थैंक यू वेरी वेरी मच। और एम रजा चौधरी ने हमें मैसेज किया है, शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब लाहौर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं आपको, थैंक यू वेरी वेरी मच आपको खूबसूरत शो करने पर। FM 101 रेडियो लाहौर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और कह रहे हैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम तरतीब देते हैं, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट से बेस्ट शो लेके आए। अल्लाह पाक आपको FM 101 की पूरी टीम को खुश रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, योर मैसेजेस मीन्स अ लॉट। हमदुल्ला मल्ला खेल ने हमें मैसेज किया है, अगर आप किसी में कोई ऐप देखें तो उसे ऐप को अपने अंदर तलाश कीजिए, अगर उस ऐप को अपने अंदर पाएँ तो उसे निकाल दीजिए। ये हमें मैसेज भेजा है हमदुल्ला मल्ला खेल ने, हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। और नज़ीर हुसैन ने कहा है, ये मत सोचिए कि छोटा नसीहत कर रहा है तो बड़ा होके कैसे मान लूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत सी ऐसी बात है जिस पर मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ कि जो है ना कभी कभार होते हैं ना कि बड़े यही सोचते हैं कि अगर छोटा कुछ कह रहा है तो वो गलत ही होगा। इसलिए हालांकि जो बच्चे होते हैं ना, वो जब बात करते हैं ना तो बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद, बहुत रिसर्च के बाद ही बात करते हैं, तो उन पर ज़रूर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं सोचते नहीं, अगर किसी छोटे ने ये बात की है तो ये सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। रियाज भट्टी ने कहा है, नहायत शानदार, थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत खूबसूरत से इमोजीज़ भेजे हैं। सजना रेडियो शो बेस्ट शो, थैंक यू वेरी वेरी मच, यू मेड माई डे। और साथ ही कहा है, बेस्ट अवामी शो, थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, उस पर होगा डिस्कवर विद _JIAGR _JIAGR। ये है मेरा निक नेम। और रियाज भट्टी ने कहा है, ग्रेट ग्रेट शो, थैंक यू वेरी वेरी मच, अगर आप हमें फ़ोन करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं 1111001001। और रियाज भट्टी ने हमें बहुत से खूबसूरत से मैसेजेस किए हैं, रियाज भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़रूर आपने मुझे बताना है कि आज आपके किचन में क्या बन रहा है। गर्मियों में ना, क्योंकि दिन बहुत लंबे होते हैं और आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चलना होता है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम, जब वक्त हाथ से निकल जाता है ना फिर आपको वक्त की कदर आती है। और जैसे कि मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बात की थी कि आजकल हमें ज़्यादातर जो ड्रामे देखने के लिए मिल रहे हैं उसमें क्या होता है, दूसरी शादी, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है कि आजकल हमें, देखिए वही जितना आप उसको देखते हैं ना वही चीज़ जो है हमें माशरे में होती ज़्यादा नज़र आती है। अगर हो भी रही है तो उसको इतना ज़्यादा इन्हांस नहीं भी करना चाहिए, या करना चाहिए ताकि हकीकत लोगों के सामने आए। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा।

0: देखिए ज़िंदगी क्या ना, कोई भरोसा नहीं है, जब तक ये बात हमें समझ आती है ना तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट, हर लम्हा इंजॉय करें। जैसे कि आपकी ज़िंदगी है ना, हमारी लाइफ बहुत अनप्रडिक्टेबल होती है, बहुत सी ऐसी खुशियाँ, बहुत सी ऐसी बातें जो आपके आप जिनके पीछे भाग रहे होते हैं ना, वो अक्सर आपके इर्द गिर्द ही होती हैं, आपके पास ही होती हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं रहे होते। क्योंकि आप ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने मसरूफ़ होते हैं ना, इतने मसरूफ़ होते हैं कि कुछ महसूस करने की ना सलाहियत ही आपके अंदर ख़त्म हो जाती है, और आप बस आपको लगता है कि आपने 9 to 5 काम करना है, यहाँ जाना है, वहाँ करना है। और एट टाइम्स ये भी होता है ना कि कभी कभार हम अपने बच्चों को ना जल्दी जल्दी में बहुत रूड जवाब दे देते हैं। तो लेकिन दिस इज़ द टाइम जब आपके बच्चे सीखते हैं, बच्चे जो हैं जो किताबों से काम सीखते हैं, वो जो प्रैक्टिकली देखते हैं ना, जो अपने घर में होता, अपने स्कूल या कॉलेज में होता, उससे वो ज़्यादा सीखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी कौन बात करें, कहाँ से?
1: खान बाबा बोल रहा हूँ।
0: जी खान बाबा, लाहौर से क्या कहना चाहेंगे आप?
1: एक तो यह किचन में बन रही है आज खिचड़ी।
0: अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है,
1: ठीक है। नंबर दो, आपने कहा कि दूसरी शादी।
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: अच्छा, एक बच्चा गया स्कूल, तो उस्ताद ने उसको कहा कि आपका बेटा क्या नाम है? तो उसने कहा मेरा नाम है 27।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है,
1: मतलब है 27 ना।
0: ठीक है ठीक है।
1: तो उसने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 27? कहता जी हम 13 बहने 14 भाई हैं, तो इसलिए मेरा नंबर है 27, तो मेरा नाम 27 रखा गया है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा,
1: तो ये दूसरी शादी का हाल है।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया।
1: अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारी दुआ है।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो बहुत खूबसूरत लतीफ़ा सुनाया आपने। तो क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ना, हमारी हमें इर्द गिर्द बहुत कॉमन देखने में आ रही है, बहुत ज़्यादा हमें हर जगह पे यही नज़र आ रहा है, ड्रामास में ये हमें बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इस बात पे हमें गौर करना चाहिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, किस तरह हम अपनी सोसाइटी को, अपने कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत सा ट्रैक ऐड करते हैं, साथ ही मैं इसके बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लूँगी।

0: जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो।
1: बड़ी मेहरबानी और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रमजान अनवर गुजर मॉडल टाउन लाहौर से। सुना है वजीहा आसिम बोले बातों से फूल जड़ते हैं, सुना है वजीहा आसिम साहबा बोले तो बातों से फूल जड़ते हैं, ऐसी बात है, चलो हम भी बात करके देखते हैं। बहुत सी दुआओं के साथ आ गई और छा गई, आ गई और छा गई, आ गई, आ गया और छा गया वो हसीनो जमील शाहकार, जिसका था हम सबको बड़ा ही बेताबी से इंतजार, क्योंकि बा अदब बा मुलाजा होशियार आवाज की दुनिया की मलकाए आलिया, मलकाए सलामत सदा सलामत और ता क्यामत, हिट एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर के लाइव स्टूडियो में तशरीफ ला चुकी हैं सुनने वाली अजीम कदीम सुपरस्टार समातों को। रमजान गुजर एक बार फिर आदाब तस्लीमात, गुड गुड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और गुड मॉर्निंग लाहौर और बाद की दुनिया के दोस्तों को
0: शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत अंदाज में आप हमेशा बोलते हैं और इंट्रोडक्शन कराते हैं, और आपके इतनी प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बड़ी मेहरबानी, मुझे मेरी मेहनत वसूल होगी मैम, आपने आपने बड़े बड़े एहतराम से इज्जत दी, मैम नवाजिश और मशकूर आपका, तो आपका आपकी तरह बहुत खूबसूरत, कैसे मिजाज आपके?
0: बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, प्यार और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बड़ी मेहरबानी, मुझे मेरी मेहनत वसूल होगी मैम, आपने आपने बड़े बड़े एहतराम से इज्जत दी, मैम नवाजिश और मशकूर आपका,

0: अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरी काफी काफी ख्वाहिश मेरी दुनिया में अल्लाह पाक ने पूरी कर दी। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी वाइफ मेरे करीब है, क्योंकि वो मेरा ऐसा हाल करेगी वो मैं सोच नहीं सकता, लेकिन मैं आज कहूंगा और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए टॉपिक तो मैंने रखा है ना, ठीक है ना, तो इसलिए आप जो है ना आप इसके दायरे में नहीं आते, टॉपिक रखने वाले तो हम है ना,
0: लेकिन जब भी मैं कुंडली लेके अपनी तकदीर लेके किसी बुजुर्ग के पास जाता हूँ
1: तो
0: मेरा चेहरा और मेरे हाथ की लकीर देख के दो मिनट का मुराकबा करके और बड़े ही इकराम से कहता है जिगर साहब तुम हूँ रिश्ते भी नहीं तुम हूँ फरिश्ते की जरूरत है।
1: सही है सही है, लेकिन ये है कि दूसरी शादी का शौक सबको होता है। हाँ
0: बिल्कुल ऐसा ही है, और मरते तब तक दूसरों का तो नहीं पता, मुझे अपना पता है, मरते तब तक ये मेरी ख्वाहिश रहेगी, ये भी पता है पूरी नहीं होनी।
1: अच्छा ये भी आपको पता है, ठीक है,
0: क्योंकि जिस दिन ये पूरी होगी फिर भाई मुझे पता ही।
1: ठीक है ठीक है ठीक है, जो तकरार की आवाज है ना मुझे अभी भी पीछे से अभी भी आना शुरू हो गई है, ठीक है ना,
0: बिल्कुल ऐसा ही है। और आपका शो आप आई हमेशा की तरह बहार आई और वन वन की विनिंग टीम को सलूट, शानदार शो पेश करने पर, कामयाब शो पेश करने पर, एडमिनिस्ट्रेशन हिट एफएम वन वन जिंदाबाद पाइंदाबाद। और मेरे दोस्त कुछ सुन रहे हैं रियाज भट्टी साहब और मोहम्मद अरशद गोंदर साहब मंडी चौधरी, मोहम्मद अरशद गोंदर साहब मंडी बहाउद्दीन से और रियाज भट्टी साहब शादरा से और फरी आपी
1: जी,
0: एक ही रिक्वेस्ट है और हमेशा रहेगी कि पकाया पकाती आप खूब हैं लेकिन खाने का अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, बड़ा मेहरबानी कोई ऐसा मामला करें कि हमें आपका आपके हाथ का बना हुआ
1: हाँ, कुछ रखना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम रखना पड़ेगा अब है ना।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह हमारी फैमिली हिट एफ एम 101 की फैमिली को, हिट एफ एम 101 के चैनल को शादोआबाद रखे, पाकिस्तान
1: पाइंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया बहुत बहुत, अल्लाह हाफिज। हाँ जी ये थे हमारे बहुत प्यारे से बहुत अच्छे से कॉलर, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बापू जी, क्या हाल है, ठीक हो?
1: हाँ जी ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वेलकम टू द शो, अपना नाम बताइए। जी जी जी बोधी जट, कैसे हैं आप?
2: जबरदस्त, अभी आपका शो सुना और भी जबरदस्त हो गया।
1: अच्छा तो रावी के कंडे में बैठ के आज आप एंजॉय कर रहे हैं बारिश और दरियाए रावी? हाँ
2: हाँ जी बारिश तो हो रही है आपकी जी, लेकिन इसे डेरा अपना आपकी जी एंजॉय नहीं कर रहा है, भैंसे रखी है आपकी जी।
1: अच्छा अच्छा सही है सही है।
2: हाँ जी आपकी जी घर अपना वांटोन के नाल पिंड शादेवाल दे विच।
1: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जी ये जो जो छुट्टियों में जाना कहीं, क्या उसमें आप पसंद करते हैं बच्चों के साथ फैमिली के साथ छुट्टियों में कहीं जाना कि नहीं घर में रहना पसंद करते हैं?
2: आप जी गल करने का मकसद ये है कि असी तो सीधी गल तुहानूं दस लिया कि यह जो असी मंझां मुझां भैंसां रखियां इस घर को मर ही जाए तो सानूं किधर जाण दी है।
1: हाँ
2: आप जी इन्हां ने खाना है तो समझ लो इन्हां कहना वो बोल लिया कि तुहाडे घर को मर गया तुसीं चले जाओ बच्चियां नूं लै के किधर पैसे लै के।
1: सही हो गया सही हो गया,
2: वाले साहब बहुत हो गए उदों दा बिलकुल टाइम नहीं लगता, लेकिन
1: क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको अपने जानवरों से इतना लगाव है, इतनी उनकी फिक्र है, ये भी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा।
2: आप जी कभी अपना रावी के कंडे सैर करनी है तो तुम अपने वीर को लाजमी आना, बोधी जट तुहानू बिलकुल वेलकम करता है, वन वन की पूरी टीम नू।
1: क्या ही बात है क्या ही बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
2: खैर हो आप जी, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे, बड़ी फरी आप जी तुहानू सुन रहे ने, सलाम कमल नाथ आप जी ने, लीला जी ने,
1: और अभी ये थोड़ा सा जो है ये जो रेड अलर्ट है 23 जुलाई तक वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम बनाएंगे कोई प्रोग्राम, ठीक है ना रावी, देखेंगे आपके साथ।
2: जी जी। चंगी गड्डी ते चंगी बुड्ढी होवे ते बंदे दी पूरी लाइफ

0: सेटल हो जाती
1: हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: दूसरी शादी का बंदा तसव्वुर ही नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की आपने है। इसका मतलब है आपकी बीवी आपका बहुत ख्याल रखती है, बहुत प्यार करती है आपसे, है ना?
0: हाँ जी, आपकी जी अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ तो बाद मेरी बीवी है जेड़ा मेरा ख्याल करती है, वरना शायद कबरा चुंदा।
1: चले जी, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह
0: तमाम सलाम से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
1: जिंदाबाद। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
2: जी अपनी रजिया, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद फरुखाबाद से। यार बोलदी जट ने यार किया था, ऐसे भी सुनते हमने, ये भी मेरा ते नाल नाल ही है, साडी दोस्ती इस तरह दी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
2: माशाल्लाह बाजी ताडे वास्ते बहुत सारीयां दवा, साडा प्रोग्राम बड़ा ही वधिया आंदा स्वीट। जो रजा भाई कह रहा मेरी 6 महीने हो गए कॉल ही नहीं मिली, मेरी रिक्वेस्ट ही करके मेरी कॉल उठा ले।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हाँ हमें तो देखिए नहीं नहीं, देखिए हमें यहाँ पे ना कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता कि किस किस की कॉल आई है, हमें हम बस जय साथ साथ कॉल लेते रहते हैं, यहाँ हमें किस जारी बात है वो नहीं अपेयर हो रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल, पानी दरिया लागे बिल्कुल नहीं रिस्क लाना भी है, मैं भी
1: बहुत एहतियात करनी है। बिल्कुल
2: बाजी, एक मैं रिक्वेस्ट करना, देखना साडे अगे गाड़ी जा रही है, सामने से भी आ रही है, कई बार भी विचों दी लंघ जाके ना बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, जो 2 मिनट लेट चल जाना अच्छा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बारिश में बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है, बहुत आपने अच्छी बात की।
2: बिल्कुल
1: जरूर जरूर,
2: बहुत सारिया
1: वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो बिल्कुल जो है ना बोधी जट साहब, आपने बिल्कुल अभी आज जो है ना कुछ दिनों तक, स्पेशली 23 जुलाई जब तक रेड अलर्ट है, आपने दूर रहना है थोड़ा सा रावी से, ठीक है, और बच्चों को भी बिल्कुल नहाने नहीं देना, वहाँ नहीं जाने देना। और जो गाड़ी चलाते वक्त आपने ज़रूर एहतियात करनी है ज़रूर, और जो ओवरटेकिंग है स्पेशली उसको आपने अवॉइड करना है। क्योंकि बारिश में जो है ना गाड़ी स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए आपने ध्यान से गाड़ी चलानी है, ठीक है ना? चाहे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्लिपरी के चांसेस जो है ना वो हमेशा रहते हैं, इसलिए कभी भी ओवर स्पीडिंग आपने स्पेशली बारिश में नहीं करनी है।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: 4 PM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Deputy Prime Minister has appreciated the Asian Development Bank's support for Pakistan's development priorities. Pakistan has unequivocally condemned the continued threats by Houthi militia against Saudi Arabian commercial shipping in the Red Sea. Security forces have killed 10 terrorists in Balochistan during the last 48 hours. The fourth T20 International of the five-match series between the under-19 women teams of Pakistan and South Africa will be played in Karachi this evening. And now,
1: hi, this is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: क्या आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो इंतजार कैसा हुकूमत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन तरबियत फराहम करने वाला इदारा डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम वजारत आईटी और टेलीकॉम की जानिब से इग्नाइट और वीयू के ज़ेरे एहतमाम पेश कर रहा है मुफ्त ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज लीगल फुल स्टैक डेवलपमेंट क्लाउड कंप्यूटिंग शॉपिफाई डेवलपमेंट और दीगर 24 कोर्सेज में दाखिलों का आगाज तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए www.digiskills.pk विजिट करें या 0304111570 पर رابطہ करें
4: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں بچے بوڑھے خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں جانوروں کو حفاظتی ٹیکا جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں ریڈیو ٹی وی اخبارات فون ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں حفاظت صرف احتیاط میں
5: 101 FM तूफानी बारिश में निकासी आब मुअसर ना होने की सूरत में शहरों में सैलाब आने का खतरा रहता है अवामुल नास और मुतलका जिले इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि बारिशों से पहले पानी की उम्दा निकासी सफाई और सीवरेज का अच्छा इंतजाम कर लें कूड़ा करकट नालों में फेंकने से गुरेज करें सैलाब के दौरान बिजली के खंभों और कच्ची दीवारों से दूर रहें बिजली और गैस के मेन कनेक्शन मुनक़ता कर दें कीमती साजो सामान को अलहदा किसी ऊपरी जगह पर मुंतकिल कर दें अशिया खुर्दोनोश साफ पीने का पानी मोबाइल फोन और रेडियो का इंतजाम रखें किसी भी हंगामी सूरतेहाल में रेस्क्यू महकमात से रजू करें और मुतलका नंबर्स पर राबता करें आफात से महफूज पाकिस्तान हम सब की मंजिल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
6: दिस इज FM 101
4: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
7: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान

0: this music,
1: with the and new then
0: there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: Hum pe hi guzre.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

तो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू राज ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

और चुप हो गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया, मैं थक सा गया, और चुप हो गया।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

से जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना पाए।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डेंटर दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: 101 FM।
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस रोबोटिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स एक्सपो का आज इस्लामाबाद में इफ्ताह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने आसियान खित्ते के साथ अपने रवाबित को मज़ीद वसअत देने से मुतालिक पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और ईरान ने बाहमी मफाद में रेलवे और इलाकाई रवाबित मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। अमेरिका में कायम मालियाती दर्जाबंदी के बैन अल-अक़वामी इदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती मालियाती दर्जाबंदी बी माइनस से बेहतर करके बी कर दी है।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
4: There's music and then there's magic. One above FM 101. There's music and then there's magic. One above FM 101.
5: Coming up next, RJ Talks on your radio dial. Keep it locked. Coming up next, RJ Talks on your radio dial. Keep it locked.
6: Raat ka show mood ho gaya set. Music trappy, no regret. RJ Talks on the floor, yeh hai scene. 10 se 12 ban gaya.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above.

ओके 12 हो गए पूरे और 23 जुलाई हो गई। आगाज़ गुफ्तगू है इन्हीं अल्फाज के साथ कि बसा औकात ये होता है दिल से आपके बहुत सारी सदाएं निकलती हैं, दुआएं निकलती हैं और कुछ आपके पास लिखे पड़े जुमले होते हैं, कुछ उनसे हट के भी बात होती है। एक लिखी पड़ी जो बात होती है वो तो आपकी जबान पे वैसे चढ़ी रहती है और उस बात को आप दोहराते रहते हैं और वो जो रूटीन से हट के हो ना ऑल टुगेदर, एक आपकी लाइफ जा रही है एकदम से थ्रिल आ जाए ना, चेंज आ जाए ना, उसकी फील ही डिफरेंट होती है, चाहे वो किसी की मौजूदगी की शक्ल में, किसी के आने की शक्ल में, या किसी के लफ्जों की शक्ल में, या वो दुआओं की शक्ल में ही क्यों ना हो, ऑल टुगेदर एक चेंज फील आती है। तो इसलिए मेरे पास भी स्क्रिप्टेड किस्म की कभी कोई बात नहीं होती, मैं ये कोशिश करता हूँ जब आया हूँ तो अंदर की कोई बात की जाए, अंदर से बस कुछ निकलता रहे और हालत दुआ में रहना इज़ गुड। आई एक्चुअली वांट टू सी एवरीवन अराउंड मी हैप्पी, कोशिश तो बंदा करता है लेकिन उसमें फिर कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं, कभी किसी को आप खुश कर पाते हैं और कभी किसी को नहीं करते, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी खुशी और आपकी ख्वाहिश कुछ और होती है और आपके इर्द गिर्द मौजूद जो है उनकी ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, वो बिला वजह आपके पीछे पीछे और तरह से आ रहे होते हैं लेकिन आप कभी नहीं चाहते कि वो आपके पीछे आए, तो वो खुद को खुद तकलीफ देते हैं। बट स्टिल इट्स नॉट मी, इट्स नॉट यू, आप भी यही चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द वाले खुश रहें और मैं भी यही चाहता हूं कि मेरे इर्द गिर्द वाले भी खुश रहें और कुछ भी करें। ऑलवेज रिमेंबर, आपकी जबान आपके कहे अल्फाज असर रखते हैं, जिस तरह देखने से नजर लगती है ना, आजकल ये भी एक थोड़ा थोड़ा सा फियर चल रहा है नजर ही ना लग दे, उसी तरह अल्फाज भी बहुत मैटर करते हैं, आपके अल्फाज भी उसी तरह असर अंगेज होते हैं, असर डालते हैं, आपकी ऑल टुगेदर लाइफ, आपकी फील बदल जाती है। तो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, जबान ही वो चीज़ है जिसके बारे में सरकार रसालत माब ने भी इरशाद फरमाया कि मफहूम उसका ये है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल करो, ये तुम्हें राइट साइड पे भी लेके जाएगी, रॉन्ग साइड पे भी लेके जाएगी और अंजाम भी फिर वैसा होता है। तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके लिए लफ्ज़ और ज़बान इस्तेमाल की जाए, आप उसी तरह के लफ्ज़ और ज़बान दूसरों के लिए भी इस्तेमाल किया करें। और मेरा बहुत सारा सलाम अकीदत है मेरे तमाम फौजी भाइयों के लिए जो इस वक्त वतन अजीज की हिफाजत पर मामूर हैं, यकीन करें आपकी वजह से मेरे जैसे बंदों का सर फख्र से बुलंद होता है और जितने पाकिस्तानी हैं अनडाउटेडली दे ऑल लव यू, और इसी तरह से आप खुश रहें और आपके घर वालों की आंखें आपकी मौजूदगी से ठंडी रहें, आप अपने घर वालों का नहीं पूरे पाकिस्तान का फख्र हैं। ओके वेयर्स माय बीजीएम मैन, प्ले, हेलो प्ले, नो ओके, मानता नहीं है ना यार, कभी कभी कंप्यूटर भी मेरे जो इर्द गिर्द वाले जो मेरे साहिबान हैं ना, कुछ इक्का दुक्का से मेरे दोस्त हो गए, कुछ करीबी यू नो वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ये भी उन्हीं की तरह कभी नहीं मानता, जबरदस्ती मनाना पैंदा है। शाहजी अगर मेरी आवाज आ रही है मैं कॉफी पीना चाहूंगा यार, आई रियली वांट इट, कॉफी पिलाइएगा मुझे और यकीनन आपको मेरी आवाज नहीं जा रही। एनीवेज आई एम गोना प्ले द फर्स्ट ट्रैक, बस आज ये चढ़ा हुआ है ना यार, मैं क्या करूं, बस ये फंसा हुआ है आज दिमाग में मेरे, फंस गया हुआ है। सो आई वांटेड टू प्ले दिस फॉर यू इफ यू आर लिसनिंग, यस इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय दिस नंबर विद मी, दिस इज आज द डॉग्स एंड यू कैन कॉल मी 0422111011 0011 0011 एंड मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई नहीं है, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए 1001 लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें, जो दिल करता है लिखें।
अपने अंदर की बात लिखें, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई शेर, कोई मेरी बात तारीफी अगर करनी है ज़रूर मैसेज पे किया करें, कॉल पे नहीं करनी। अच्छा नहीं ना लगता यार कॉल पे बदतरीफी, नहीं हम मैसेज पे रज रज के करें, बिल्कुल पसंद नहीं आया आप हमें, बहुत सड़ियल मिजाज हैं आप। आई वुड लव टू रीड इट। तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाके एक से फिर एक क्लिक में स्पेस देनी है, अपने नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है अपने 4471 पर, और एफ एम 101 रेडियो पाकिस्तान और एफ एम 101 लाहौर फेसबुक पे सर्च करना है, एफ एम 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगी। एंड आई एम नॉट लाइव येट, सो डू हिट मी विद योर कमेंट्स। Oh yeah, I'm in love with your body. Gonna play this. Enjoy the number. ये तो नहीं सोच रहे राती 12 बजे अंग्रेजी गाना चल रहा है, तो आप ठीक सोच रहे हैं।

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:14 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाट शुड आई कॉल इट, अधूरी बातें। रहमान का अधूरी बातें होता है, बट मैं अधूरी बातें नहीं करूँगा। अधूरापन मुकम्मल होने में टाइम लगता है, सम टाइम इट टेक्स यू नो डिकेड और मोर और सम टाइम एजेस, कभी 7-8 साल, कभी ज़्यादा, इट डिपेंड्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स। तो मैं लाइट थेरापी करता हूँ, गो फॉर इट। अच्छा, तो मेरे सामने पहले मैसेज आया है, ज़रा मैं देख लूँ। अब्दुल नूर हाशमी साहब ने मुझे तकरीबन 10:30 मैसेज किया था, आदाब लिख के, तस्लीम जनाब, मेरी गैर मौजूदगी में आपने प्रोग्राम को पसंद किया, मेरी ना आने वाली आवाज़ पे आप खुश हुए, बहुत शुक्रिया। वो इस चीज़ पे खुश थे कि ऐसी आवाज़ नहीं आ रही आज, ओके दैट्स गुड, चंगा नहीं आया। अच्छा जी, मेहर फातिमा ने मैसेज किया, सर आपकी लाइफ में लगता है कि प्रॉब्लम चल रही है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तस्वीर आ रही थी कि नहीं आ रही थी, पहले ये बताओ। लकी बॉय रावलपिंडी से, मुझसे मत पूछो मेरे ना सोने की वजह है चांद, एक तेरा ही हम शक्ल है जो मुझे सोने नहीं देता। ओए, है ना, सही कह रहे लड़के, तुम्हें कैसे पता चला। अच्छा, फिर कहते हैं मोहब्बत उससे करो जिसका दिल अच्छा हो, उससे नहीं जिसका चेहरा अच्छा हो, और अगर दोनों अच्छे मिल जाएं तो सोने पे सुहागा है ना फिर तो। फिर आगे जी, अस्सलाम वालेकुम, लुकमान हैदर हैं। वालेकुम अस्सलाम, रावलपिंडी से पहली दफ़ा FM सुन रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान ड्यूटी पर हूँ सर, आपके लिए बहुत सारा प्यार है, आप हमारे भाई हैं, कोई गाना सुनवा दें, टेंशन फ्री हो जाए। किस तरह का गाना सुनेंगे? चलिए टेंशन फ्री गाना ही सुनाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेंगे आपने, ठीक है। और आज आई वांट टू टॉक अबाउट दिस थिंग कि नाइट थेरेपी है, तो मेरा सवाल आज के दिन, मेरा एक सवाल है, पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसे एक्सपीरियंस भी कह रहा हूँ, एंड आई वांट टू नो कि रात को दिमाग में बड़ा खराफाती किस्म के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत खराफाती किस्म के ख्याल आने लगते हैं रात को, दिमाग जो है बहुत ज़्यादा सोचता है, क्यों सोचता है, क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है दिमाग जो है रात को क्यों सोचता है। सो द क्वेश्चन वॉज के आपको रात को किस तरह के ख्यालात आते हैं, व्हाट यू थिंक, और क्यों आते हैं, डोंट आस्क मी, ओके, मैं नहीं बताऊंगा। दिस इज द क्वेश्चन जी। सो ये मेरा ख्याल है हर शख्स से जुड़ा हुआ है, जिसने कभी रात को 2-3-4 बजे छत को घूरते हुए महसूस किया होगा, उसका दिमाग जो है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, चली जा रहा है, और ऐसा चलता है कैलोरीज भी कोई नहीं बर्न होती। वैसे दिमाग के चलने से अगर कैलोरीज बर्न हो ना, शाह जी मुझे लग रहा है कॉफी बहुत तेज है, बड़ी चलाक है, एक मिनट, वो है शदीद चलाक कॉफी है, कहना थोड़ा जा कटा लो, मेरे को नहीं साम भी जानी, सो हार्ड। अच्छा, दिमाग जो है चलने का नाम लेता है, वैसे मैं सोचता हूँ अगर रुकने का नाम नहीं लेता, दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, दिमाग के चलने से कैलोरीज अगर बर्न होती हो ना, तो क्या ही बात है, फिर सारे स्मार्ट होते हैं, सारों के सिक्स पैक्स होते हैं, चासा आ जाती है। वैसे आपने कभी महसूस किया कि दिन भर आप बड़ा अच्छा अच्छा दिन गुजारते हैं, बड़े मसरूफ रहते हैं, हंसते गाते बोलते 2-2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव मार लेते हैं, फील ही कोई नहीं होता आपको, आप 4-4 घंटे की भी ड्राइव मारते हैं जाते हैं, और अगर किसी लंबे टूर पे चले जाएं तो इससे भी ज़्यादा आप ड्राइव मार लेते हैं। वैसे मैंने तो 21-21 घंटे की भी कॉन्टीन्यूस ड्राइव की है, लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक जहन में ख्यालात का एक तूफान आ जाता है, कभी माजी कभी मुस्तकबिल, कभी कोई ख्वाब कभी कोई बात और कभी कोई शख्स, ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं होते, ऐसी ऐसी चीज़ें अपने पास भी नहीं होते, ख्यालात की शक्ल में आना शुरू हो जाते हैं, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये आया कहाँ से, आउट ऑफ नोवेयर यार, व्हाट, व्हाई इज दिस एंड व्हाई इट्स लाइक दिस, ये
कहां से, हाउ? तो मेरा ख्याल है आज इस पे हम बात करते हैं कि जो इतना ज्यादा प्रोसेस एकदम से स्टार्ट होता है दिमाग में ख्यालात का, तो ये क्यों होता है और किस तरह के आपको ख्यालात आते हैं? अगर आप मुझे बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर आप समझते हैं कॉल पे नहीं बताना तो आप मैसेज पे बता सकते हैं, कोई बात नहीं, आपस की बात है, आपस में रखेंगे, आई वोंट टेल एनीवन। ठीक है जी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल शाह जी, हमारा फोन चल रहा है क्या? बारिश की वजह से मुनकता तो नहीं चल रहा है? अच्छा, आप कॉल कर सकते हैं 04221100101 0421110001। आप इस पे मुझे कॉल कीजिए और इसके अलावा आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम और अपना पैगाम लिखेंगे और इसको भेज देंगे 4471 पर। एंड इसके अलावा मेरी पोस्ट है FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, वहाँ पर भी आप डू हिट मी विद योर कमेंट्स। और यहाँ पे एक गाना लगाते हैं, सवाल मैंने दे दिया और ये सवाल जो है ये मौजू है गुफ्तगू, तो बाहर जैसे मैं कह देता हूँ, मगर मेरे अंदर जो उठने वाले ख्यालात होते हैं ना जी, मैं उन्हें आगे आपके सवाल की शक्ल में रखता हूँ, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश होती है मैं सीखूँ कुछ ना कुछ ना आप लोगों से। यहाँ जब आता हूँ तो बेमानी से गुफ्तगू ना रहे, महज कुछ सीखता जाऊँ आपसे। तो मेरे भाई ने कहा एक अच्छा सा गाना सुने, टेंशन फ्री हो जाऊँ, चासा आ जाए, चासे दिलाऊँ फिर आपको मैं। सीजन सुनने वाले भी कहेंगे हुई 12 बजे द शो है, 12:30 किस किस्म के गाने लग रहे। कोई नहीं, हम ग्रेजुअली स्लो होंगे, इंतहाई स्लो गाने पे आपको छोड़ के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। इतना स्लो गाना मुकेगा ही नहीं। It's 12:21 AM and 23rd of July 2026. Yo. सर एंजॉय करें, मैं पहली बात से एग्री नहीं करता बहरहाल में।

ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:28 और आज 23 जुलाई 2026 का सीन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आरजे डॉक्स। और मेरा वैसे टाइम होता है ये वाली 10 से 12, लेकिन आज बावजह मजबूरी मैं वक्त पे नहीं आ पाया, तो मेरा जो है फिर रहमान भाई के ना आने की वजह से 12 से 2 बजे वाली स्लॉट में आई एम हेयर। मैंने कहा चले आपको इस स्लॉट में भी तंग करते हैं ना, और रहमान भाई के जो लिसनर हैं डेफिनेटली उनको इंतज़ार होगा। एंड आपके लिए यही है कि दुआ करें बस उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। एंड जल्दी से वो वापस आए, उनके लिए बस दुआ कीजिएगा। तो आज का सवाल मैंने जो आपके सामने रखा है, सवाल ये है कि रात को हमें बहुत सारे ख्याल आते हैं, और किस तरह के आपको ख्याल आते हैं और क्यों आते हैं। अब मामला ये है जी, मामला ये है कि हमारे पास टेलीफोन लाइन डेड है, उसकी पल्स नहीं आ रही। हमने मशीन लगाई थी ECG से चेक किया, वो डेड हो गई। तो इसलिए आज मैसेजेस पे गुजारा करेंगे हम, और मैं कोशिश करता हूँ लाइव आ जाता हूँ, चलें ऐसे करते हैं। और आप लोगों के मैसेजेस भी साथ प्रॉपर शामिल करता रहूँगा आज, चले मैसेजेस सारों के शामिल हो जाएंगे। एंड नहीं है जी, नो पल्स, खैर। 4471 पे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक सवाल पूछना था कि FM 101 के ओल्ड स्टाफ में से आपने जिनके नाम लिखे, साद अफरीदी, अरशद बुखारी, नवाल, इनमें से कोई प्रोग्राम करता है? अगर करता है तो प्लीज़ उनका टाइम बता दें, थैंक यू। बड़ी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, पहली मरतबा ये नाम मैंने सुने हैं, और आई हैव नो आइडिया। अगर ये किसी और स्टेशन से करते हैं, इस वक्त आप सुन रहे हैं लाहौर स्टेशन, तो मुझे अंदाज़ा नहीं, तो इसके लिए मैं माजत खाऊँ। आई वॉन्ट बी एबल टू डू एनी काइंड ऑफ फेवर एंड हेल्प। तो जी, हम बात कर रहे हैं किस किस्म के ख्यालात आते हैं। पहली तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपका दिमाग जो है ये सोता नहीं है, आपका जिस्म सोता है, आपके रूह और आपका दिमाग ये सोते नहीं हैं। और दिन भर ये बिजी रहने की वजह से बहुत सारी चीज़ें भी डाइजेस्ट कर रहे होते हैं हम लोग, और बसा औकात ये होता है कि कुछ अनयूजुअल सी आपकी लाइफ में चेंज आती है ना, ऐसे 2-3 दिन में बिल्कुल ऑल टुगेदर एक रूटीन ही बदल जाती है, आपको हर चीज़ डिफरेंट डिफरेंट लगना शुरू हो जाती है। यू गो टू योर प्लेस एंड यू फाइंड इट अनफेमिलियर, और आपको लगता है नहीं, स्टिल आई एम नॉट एट माई प्लेस। और बंदा कहता है यार मैं कार आके भी यहीं लग रहा है, मैं कार नहीं आया। फिर रात को लेटने के बाद भी है, जोन आउट है आप, यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग डिफरेंट एंड समवन, और कुछ भी इस तरह से होता है, सडनली इट हैपन्स। तो उसके बाद आपका दिमाग जो है ना रात सारा प्रोसेस करता रहता है, बहुत सारी चीज़ें सोचता रहता है। और क्योंकि अब कॉल नहीं आएगी तो मैं ही फिर इस पर गुफ्तगू किया जाता हूँ, तो प्रोसेसिंग करता रहता है दिमाग। दिन में भी सोचता है, जब आप बातें करते हैं, रूटीन के मैटर होते हैं, उन्हें आप एक्सप्लोर करते हैं माइंड से, आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड यू रिस्पॉन्ड टू एवरी सिचुएशन एंड एवरी थिंग। लेकिन रात को बहुत ज़्यादा जमे गफीर होता है आपके पास, देयर आर सो मेनी थॉट्स। और वो जो ख्यालात होते हैं वो इसलिए नहीं होते कि रात को कुछ स्पेशल एक्टिविटी होती है। लोग अक्सर कह रहे होते हैं, अक्सर मैंने सुना है कि जी रात को हमारा दिमाग बहुत काम करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं। लेकिन और दिन में एक्चुअली होता ये है कि दिमाग हमारा मसरूफ़ बाज़ार की तरह होता है ना, सो मसरूफ़ बाज़ार रहता है। ऑफिस है आपके, टेलीफोन कॉल्स हैं, फ्रेंड्स हैं, घर है, सोशल मीडिया एंड डिजिटल एंड देयर सो मैनी थिंग्स एंड एवरीथिंग इज लाउड। ये नहीं है कि वॉल्यूम किसी शय का आप होना ही लाउडनेस है, लाउडनेस इज के उसकी उसकी स्ट्रेंथ, और इतना ज़्यादा वो आपको इंगेज रखता है, पावरफुल होता है कि आप उसमें बिजी रहते हैं और अंदर की एक्चुअली आवाज़ आती नहीं आपको। लेकिन जैसी रात होती है, रात एक्चुअली खामोशी होती है, जब बाहर भी खामोशी हो जाती है तो अंदर जो आपकी आवाज़ें हैं ना, जो आपके थॉट्स हैं, वो लाउड हो जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगती हैं।
साइकोलॉजी इसको कहती है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो है ना वो आपको ऑन हो जाता है, फिर आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है, कभी दिन के बारे में, कभी पिछले दो तीन दिन के बारे में, कभी उससे पीछे, कभी उससे भी पीछे चला जाता है। ये अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत सा निज़ाम बनाया। दिमाग शुरू करता है अपने बारे में सोचना, कभी अपनी गलतियों के बारे में, कभी अपने मुस्तकबिल के बारे में, कभी अपने रिलेशंस के बारे में। इसलिए आप अक्सर लोगों से ये बात सुनते हैं, खुद भी कहते होंगे, मुझे रात को बहुत ज़्यादा ख्यालात आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ मैं, थॉट ट्रिगर होते हैं। एक्चुअली ख्यालात ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ शोर कम हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके माइंड पे करंट सिचुएशन चलती है उसी से रिलेटेड आपको ख्यालात आ रहे होते हैं। से सारी गल्लां तो मैं दस दी हूँ, तो फिर टॉपिक की रहा या सवाल की रहा, बट येट आई रियली वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू। देखें ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सारी मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशंस हैं, या किताबी सी बातें हैं, या साइकोलॉजी से हैं, इधर उधर से पढ़ लें, सीख लें, समझ लें। एक तजर्बा हो जो होता है, जैसे आपका है, आई रियली वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम इट, मैं चाहता हूँ आप अपने तजर्बात शेयर करें और मुझे बताइए कि मैं किस मकाम पर गलत हूँ, ताकि मैं अपनी गलतियाँ ठीक करूँ। और इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से सर्च करेंगे FM 101 लाहौर और वहाँ पे आपको मेरी पोस्ट मिलेगी, और यू कैन हिट मी विद योर कमेंट्स, और FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह आपको मेरी पोस्ट अवेलेबल मिलेगी, आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ी देर में लाइव भी आता हूँ RJ_DOX डॉक्स पे। और इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए अपने मोबाइल की आपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, और उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, स्पेस देनी है और उसको भेज देना 4471 पे। वैसे तो कोई भी बात कर सकते हैं, अगर मौजू पे आप समझते हैं नहीं नहीं बात नहीं करनी, मत करें, मेरा कैनवस बहुत बड़ा, आपने रंग भरने अपनी बातों से, मैं तो कहता हूँ रंगीन ही करते हैं, मुझे रंग दे। अभी आप एक गाना लगा तो वापस आके आपके पैगामात के शामिल करते हैं। दिस इज आर जे डॉक्स फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ FM 101 लाहौर, डोंगो एनीवेयर, इट्स 12:36 AM 23rd ऑफ जुलाई 2026। आए सर जी, आपको आवाज आ रही है, एक और चास दिलाऊं आपको गाना सुना के। आहो ए गाना मतलब उफ़ ना कीती हाय, को यार बनाया तेरा ला पैर पीछे पीछे आने लग जाते हैं ना लोग, फिर ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे एक ही हो रहे हैं। एंजॉय द नंबर, डोंट गो एनीवेयर।

ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 12:45, हुए अजय भी 1 घंटा 15 मिनट बजे। I'm gonna spend this time, man, without any telephone call. Oh no. Anyways, it's 12:46 AM on the dial, 23rd of July, 2026. This is Ajay Talks from the studio of FM 101, and you're listening Night Therapy, जिसमें आपका मेरे साथ होता है वो दर्जे रात की शब 10 से 12 बजे तक। लेकिन आज मैं मसरूफ था, और खैर आगे भी मसरूफ ही फिलहाल रहने वाला हूँ, शदीद वाला मैं। तो फर्रा रहमान साहब नहीं आए, उनकी जगह पे मुझे ऑन एयर आना पड़ा, और मेरा तो अपना मिस हुआ स्लॉट, तो मैंने कहा चले आ जाए। तो उनकी स्लॉट ज़रा अधूरी बातें और तरह की होती हैं, मेरी ज़रा बातें और तरह की होती हैं। अब उन जैसी गुफ्तगु मेरे से वल्लाह नहीं होती, जिस अंदाज में, जिस तरह से वो पहले आसमान पर ले कर जाते हैं, मैं उस तरह से कतअन आपको नहीं ले जा सकता वहाँ पर। मेरे पास तो और तरह की बातें होती हैं, मैं तो और तरह की गुफ्तगु कर सकता हूँ। मैं उसे किस्से कहानियाँ भी उस तरह नहीं सुनाए जाते, लेकिन मैं कुछ ना कुछ अपनी मर्जी का कुछ ना कुछ ऐसे ही कह कूद लेता हूँ। सो आज भी मैंने एक सवाल आपसे पूछा, वो सवाल यही था कि जो हमें रात को ख्यालात आते हैं वो क्यों आते हैं, और किस तरह के ख्यालात आते हैं, और इसकी वजह क्या है। क्योंकि अब आपकी कॉल नहीं आ सकती, मैसेजेस सिर्फ आ सकते हैं, तो आप मैसेजेस पे अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो एसएमएस करने के लिए आपने

0: मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पर। और मौजू मेरा जो भी है इससे कतः नज़र, आप कोई भी बात करना चाहें, कोई भी चीज़, कोई किस्सा, कोई कहानी, कुछ मुझसे कहना चाहें, कुछ पूछना चाहें, एनीथिंग यार, माई फ्लोर इज़ ओपन, माई कैनवस इज़ सो बिग, यू कैन फिल इट विद द कलर, व्हाटएवर कलर यू वॉन्ट, जिससे दिल करता है रंग दे। और इसके अलावा मेरी पोस्ट है, इस पर आप कर सकते हैं कमेंट, FM 101 लाहौर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे और FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह आपको मेरी पोस्ट अवेजा मिलेगी, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस शामिल करता हूँ फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लुकमान हैदर, हमें जिंदगी से क्या लेना, शहादत है मिशन अपना। लुकमान, सरहदों पर दफन होंगे, वर्दी होगी कफन अपना। अरे लुकमान भाई, बहुत सारा प्यार आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे सारे फौजी भाई गाजी होकर लौटें। बहुत सारा प्यार एंड थैंक यू वेरी मच जी। मेरी लाइव स्ट्रीम इस वक्त ऑन है, RJ DOX, अगर आप लिखेंगे मेरी लाइव स्ट्रीम आपको मिल जाएगी, यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो देयर एंड ओके ओके ओके। आज डॉक्स वाइब ने पहला मैसेज किया, वल्लाह हैंडसम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपने वल्लाह हैंडसम कह दिया मुझे, थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा अली रजा हैं, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम, फर्स्ट टाइम मैसेज, अली रजा बॉस थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। बाबर अयूब मेरा प्यारा भाई आया, थैंक यू वेरी मच, हाउ आर यू बाबर, एवरीथिंग इज फाइन। निमरा मसूद सर इस वक्त कैसी है आरजे निमरा, आप देख लें किसी वक्त भी नाजिल हो जाती हैं कुछ चीजें। अब मैं कहना नहीं जा रहा जो मेरे जेहन में आ रहा है अपने लिए, क्योंकि ठीक है इन्ना भी नहीं ना अपने आप को डाउनग्रेड कर लेना चाहिए था, बट ठीक है ना, नाजिल हो गया हूं मैं, हो गया हूं, बर्दाश्त करें। ओके ठीक है। लकी बॉय सर, अगर सैड सॉन्ग प्ले हो तो दिमाग ज्यादा चलता है। हाँ सैड सॉन्ग इसका मतलब है दिमाग में कोई उदासी फंसी है, बताओ ना जरा कौन, किस नाम की उदासी फंसी है पहले वो नाम बताओ। RJ जुबिया शफीक आई हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, आप एक कान से सुन रही हैं, आपने एक कान इमोजी में भेजा, दूसरा कान कहाँ पे मसरूफ रखा हुआ आपने। अच्छा आप चाहती हैं कान से, एक कान से दाखिल हो दूसरा कान ना शामिल करूं ताकि बात अंदर रह जाए, वेरी गुड। शहीद सफदर सुलेहरी, बिग फैन सर, आई एम ऑल्सो योर बिग फैन। नौशीन राशिद, अस्सलाम वालेकुम सर, लुकिंग गुड, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच, भाई खैर इनिया तारीफा जा रही हैं, रूप चढ़े आज बोता। लकी बॉय आपका मैसेज पढ़ा मैंने, हुसनैन है जी, हसनैन दरूद पढ़े और सो जाएं, बिल्कुल जी दरूद पढ़ना चाहिए, मैं दिन का आगाज करता हूँ। और मुल्तान से हैं, बिल्कुल आपका मैसेज मिला मुझे, थैंक यू वेरी मच फॉर यू मैसेज। राणा तैयब रियाज, पाकिस्तान आर्मी, रिलायंस सिटी ऑफ पंजाब, ड्यूटी इन मुल्तान, कैंट सर हमारा सारा दिमाग तो ड्यूटी पर ही लगा होता है, हमारे पास तो मोबाइल नहीं होता तो हम वीडियो नहीं देखते, ओनली वॉइस ही सुनते हैं, तो जो सॉन्ग अच्छा लगे या फिर जिसकी वॉइस अच्छी लगे, जिस तरह आपकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी वॉइस है सर, आपका हुस्न समात है, और यकीन करें आप लोगों के पैगाम आते हैं ना मुझे याद आ जाती है हमारी वो ट्रांसमिशन थी मार्का हक वाली, जब मैंने ज़ियान जुम ने और ज़ुबैर साहब ने यहाँ से की कॉन्टीन्यूसली, वी डिड दैट फॉर 48 आवर्स एंड आई जस्ट लव दैट, क्योंकि जिस तरह आप महाज पे थे और मैं समझता हूँ यहाँ पे हम पे फ़र्ज था कि हम सारे अपने वतन अजीज के लिए यहाँ पे बैठते और अपडेट रखते, सारों का मुराल हाई रखते, बहुत अच्छा लगा यकीन करें, सीना फख्र से चौड़ा हो गया। अच्छा जी फिर आप कहते हैं हम वो सुन लेते हैं, बाकी पुराने सॉन्ग आजकल सॉन्ग से अच्छे हैं, ठीक कह रहे हैं, मैं आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं सर, प्लीज़ ये वाला सॉन्ग प्ले कर दें, तेरा मुखड़ा हसीन जादू कर, यह रिलेटेबल है ना, प्ले करते हैं आपके लिए, करेंगे क्यों नहीं करेंगे। निमरा मसूद कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आप सुनाए, मैं तो मोबाइल चार्जिंग पर लगा के सोने लगी थी कि एकदम नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, नोटिफिकेशन की क्या आवाज़ आई, खबरदार मोबाइल ना पढ़ना नहीं तो फंस जाओगे। हे यू आर, आई होप यू आर वेल। लुकमान सर जी बहुत बहुत शुक्रिया, मज़ा आ गया, रुलते गए, 50 बड़ी आई है ना, थैंक यू वेरी मच जी अली रजा, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेहर कहती हैं सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अपना शो क्यों नहीं किया आपने? मैं मसरूफ था, मसरूफ गमे रोजगार था मैं। आवाज़ थोड़ी देर बाद आ गई थी लेकिन आप नहीं आए थे, मैंने आपका इंतज़ार भी किया। मैंने अभी दोबारा रेडियो ऑन किया, मेरी खुशी की इंतहा ही हो गई। हाय अल्लाह, मैं सिर्फ आपका ही प्रोग्राम सुनती हूँ, थैंक यू वेरी मच। लेकिन दूसरे शो को थोड़ी देर तक सुनती हूँ कि कहीं उस शो में आप आप वो वरना नहीं सुनती है ना, मैं अक्सर शो में वारिद हो जाता होता है, ऐ भी बिला वजह छलांग मार देता हूँ। अच्छा, हम बात करें कि ख्यालात हमें क्यों आते हैं। बहुत सारे ख्यालात आ रहे होते हैं। ख्यालात की जब बात आती है तो एक और जहन में सवाल आता है, दैट इज अबाउट ओवर थिंकिंग। गुलेलाला, हाय हेलो, हाउ आर यू? ओवर थिंकिंग के बारे में जब भी ख्यालात के बारे में बात की जाए तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो ओवर थिंकिंग का भी आ जाता है ना इसमें। और जब आप किसी शय के बारे में सोचते हों, किसी से बात करें, तो बिला वजह लोग अक्सर आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि यार यू ओवर थिंक ना करो, तुम ओवर थिंक कर रही हो या कर रहे हो, जबकि ऐसे नहीं होता। सोचना एक फितरी अमल है एंड सोचना इज अ वेरी गुड थिंग। ये बिल्कुल अपनी ज़ात के अंदर से इस ख्याल को निकाल दीजिए। ख्याल की नफी करने के लिए भी एक ख्याल आता है, ये भी बड़ी टेक्निकल सी बात है। अपने अंदर से निकाल दें कि आप ओवर थिंक करें। यू हैव सो मैनी थिंग्स, आप सुबह कहीं पे गए, किसी से मिले, किसी के साथ अच्छा टाइम गुजारा, बहुत अच्छा टाइम गुजारा और आपको फील ही नहीं हुआ, दिन आपका मुकम्मल हो गया और उसके बाद यू आर थिंकिंग अबाउट इट, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। If you are doing something, you are planning something, ये कुछ भी इस तरह का something relatable, कुछ भी आप सोचते हैं, that is not overthinking. कुछ अल्फाज होते हैं जिनके मानी और जिनका इस्तेमाल नफी तर्ज पे किया जाता है, मनफी तासुर देते हैं वो अल्फाज। इसी तरह overthinking भी एक मनफी तासुर देने वाला लफ्ज है। और ओवरथिंकिंग का मतलब ये है कि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचें जो शय अभी हुई नहीं या कोई अमल अभी एक्चुअली परफॉर्म नहीं हुआ, तो हम उसे सोचते हैं और फिर उसके अंदर से बाल की खाल उतारने वाली बात है। यू आर गोइंग वेरी डीप डाउन एंड फाइंड एवरी नेगेटिव थिंग अबाउट योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू रिलेट विद योर सेल्फ कि अच्छा मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं रिप्लाई किया, क्या वो मुझसे नाराज़ हो गया है या नाराज़ हो गई है या क्या वजह है, उसे क्या प्रॉब्लम होगी, अच्छा कोई और तो नहीं मिल गया, किसी और से तो नहीं बात कर रही है, बात कर रहा या किसी और बंदे के साथ तो नहीं है, या मुझे रिप्लेस तो नहीं कर लिया, ऐसे तो नहीं हो गया, वैसे तो नहीं हो गया। फिर फर्दर आगे उसकी डेप्थ में जाते जाते सिचुएशन ना हुई, ना लेना ना देना, आप उसको सोच सोच के नेगेटिविटी को भर लेते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। एक नेगेटिव ख्याल से 500 ख्यालात की भरमार अपने पे कर लेते हैं, ये कहलाती है ओवरथिंकिंग। इसके अलावा और कोई ओवरथिंकिंग नहीं होती। यू नेवर नो कि अगला बंदा मसरूफ भी तो हो सकता है और जेन्युइनली फंस भी जाते हैं, जिमें मैं भी फंस जाना हूं, अक्सर फंस जाता हूं और फिर डर ही फंस जाता हूं। सो दिस इज another thing related to रात को आने वाले ख्यालात। बाबा अयूब कहते हैं जब आप अक्सर डेली लाइफ चीज़ें भूल जाते हो तो इट मीन्स आपके ख्यालात में कोई हर वक्त जाग रहा है। आए हाय मैं आज भूल गया, शो था मेरा मेरे ख्यालात में कौन जाग रहा है फराब जाल कहती है अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपकी स्टैटिक पोस्ट पे टॉपिक का रिप्लाई किया, बिल्कुल मैं देखता हूँ जी। नाइस टू सी यू, माशाल्लाह लुकिंग ग्रेसफुल, आदाब अर्ज है, थैंक यू वेरी मच। जरा मर्चे लेके आए, नजर उतारें और चूल्हे पे जलाइए, जल्दी से लाइए। वक्त हो चुका है 12:56 एंड आज मैं आपसे सवाल मैंने जो पूछा है वो ये है कि जो रात को अक्सर ख्याल आते हैं क्यों आते हैं और किस तरह के आते हैं, ये आपने बताना। पढ़ी लिखी बातें एक तरफ रखें, हर चीज एक तरफ रखें। मेरी हर दफा से ये ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं यहां पे आके कोई आपसे सवाल पूछूं तो मैं आपसे पूछता हूं, जिस तक मेरी आवाज जाती है कि आप बताएं, जस्ट गो डीप डाउन इन योर सेल्फ एंड टेल मी व्हाट इज इनसाइड यू एंड वेयर इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आ रहा है। अजय डॉग्स वाइफ्स ने कहा, सर ठीक कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया, मेरा तो 2500 दफ़ा ब्रेकअप हो गया ओवर थिंकिंग की वजह से। अरे 2500 दफ़ा कर लिया, बड़ी स्पीड है आपकी, कैलकुलेशन करके बताए ना ज़रा एक दिन में कितनी दवाई किया आपने अच्छा यहाँ पे गाना लगाता हूँ मैं और उसके बाद वापस आता हूँ मैं। ओके यार बहुत बोलना पड़ता भी, कल यहाँ पे फिर आया था मैं, आज फिर आ गया। ये गाना सुनो, जिस तन्नू लगे, पहले एक अंग्रेजी चलाया, फिर मैंने एक पंजाबी चलाया, फिर एक सिराइकी चलाया।
1: मोहब्बत दिल चौंक लेके
0: हाय हाय, ये ओवर थिंकिंग पे है ना। This is Ajay Dogs. Don't go anywhere. I'll catch you back after this track. And the question is, what do you think? Late night. What comes to your mind? And where it comes from? किस तरह के ख्यालात? कहाँ से आते? यह मुझे बताएं। और अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई है तो वो आप सर्च कर सकते हैं FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह मेरी पोस्ट है। नहीं तो आप अपने मोबाइल से मैसेज करेंगे कि क्या करेंगे, आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, एक सिफर एक लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम और अपना पैगाम लिखेंगे और इसको भेज देंगे 4471 पर। मैं हूँ आरजे डॉक्स, आपके मेरे साथ है 2 बजे तक। एंड थैंक यू वेरी मच, आई एम रिसीविंग सो मैनी SMS, आई लव यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज मैसेजेस। एंड मुझे याद है भाई राणा तैयब ब्याज भाई, इसके बाद आपका गाना लगाता हूँ, टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ले आते हैं, वो मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी, लगाते हैं ना मोहब्बत। यार सीन है वैसे, हैवी है ब्रो, डोंट गो एनीवेयर।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:03, 23 जुलाई 2026 का सेना एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। आपका मेरा साथ होता है बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक, लेकिन आज 12 से 2 बजे तक आप मुझे बर्दाश्त करें। सत आसमाना दे थल्ले सरमद कदीर का आरजे डॉक्स वाइब्स ने कहा ओके जी। महाजबीन आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत हैं? बाबर भाई आपको मैसेज पढ़ता हूँ। आप इस ताश आई हैं, खुद को हर किसी की दस्तरस में ना रखिए। कीमती चीज़ें वक़ार और हदूद के साथ महफूज रहती हैं। वजारत है आप इस ताश। ओके, आपका पहुँच गया पैगाम। अली फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ओके जी, मौजू वही है, मैंने फिर से दोहराता हूँ जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, कि रात को अक्सर लेट के हमें बहुत सारे ख्याल आते हैं, और क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है, और अगर आपको भी आते हैं तो किस तरह के ख्याल आपको आते हैं? अच्छे अच्छे ही आते होंगे, बाकी और जो भी आते हैं वो तो फिर अपने ही है, वो बंदा थोड़ी किसी से शेयर करता है। जो शेयर करने वाले हैं वो होता है। वो क्यों आते हैं? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। 12 से 2 के शो में ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं। नहीं, आप तो बड़ी पुराने लिसनर हैं जी, आपको पता होगा जब जिस दिन मैं बहुत थक टूट जाता हूँ उस दिन मेरा ये ज़्यादा हाल इसी तरह का होता है। उस वक्त मेरे ज़रा थोड़ा सा वाइब्स ऐसी हो जाती हैं, मैं थोड़ा करता हूँ कोशिश ज़्यादा एनर्जी पुट करने के लिए, ताकि अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश लगूँ ना, इसलिए। ओके, अब मैं साथ साथ पढ़ता हूँ जी पैगामात, ज़रा फेसबुक वाले भी और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। फराफजाल साहिबा हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पूरा लिख देना सी, जन्नत वाला आलू दोज़ा खरामू, गुड लिसनिंग यार मिड नाइट, थैंक यू वेरी मच। एम नईम थेला, गुड शो सर, थैंक यू वेरी मच जी। केवल नाज पंजाब यूनिवर्सिटी से सुन रही हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वजीहा आर जे वजीहा आसिम, लव द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग टू। मरीना बिलाल ने सलाम किया, वालेकुम सलाम। ओके, आरजे डॉक्स वाइब का भी सलाम है, वालेकुम सलाम। हुमा शेख हैं, सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, योर शो इज़ वेरी गुड, हाउ आर यू, एंजॉय द वेदर? ओह यस, वेदर से याद आया, क्या मौसम था, क्या चासा ही सुबह सुबह, ओए होए होए। हमारे यहाँ पे तो खैर इंटर्नशिप भी चल रही है, सो मुझे यहाँ पे आना था। यहाँ पे अगर मुझे ना आना होता ना, तो यकीन करें मैंने बारिश में रज के नहाना था, मुझे बड़ा मजा आता बारिश में नहाने का। और आई रिमेंबर द मेमोरीज ऑफ फ्रॉम अ चाइल्डहुड, मेरी अम्मा मुझे बाहर नहीं जाने देती थी ना, और वहां पे गली मोहल्लों में थोड़ा सा सिस्टम और होता है, वहां पे नॉर्मली बारिश हो, बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो वो सिस्टम ड्रेनेज का जरा चोक हो जाता है ना, इट टेक्स टाइम। कोई भी चीज़ हो, जैसे बहुत ज़्यादा एकदम इन्फॉर्मेशन आए, ब्रेन भी चोक होता है आपका, ओवरवेलमिंग किस्म की सिचुएशन हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड किस्म की कभी सिचुएशन, कोई अनएक्सपेक्टेड आपको पर्सन मिल जाता है, तभी ब्रेन आपका चोक हो जाता है, आपकी सेंसेस काम नहीं कर रही होती, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे रिएक्ट क्या करना है। कभी आप उसकी मानते जाते हैं, और कभी आप नम होकर बैठ जाते हैं कि करना क्या है यार, अच्छा मुझे हाँ कहना है, मुझे ना कहना है, अच्छा तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, आप कभी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसी सिचुएशन भी होती है। अगर बंदा फेवरेट हो तो फिर बंदा हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ ठीक है। तो ये बिल्कुल चोक, इसी तरह बारिश भी जब बहुत ज़्यादा होती है तो चोक हो जाता है सिस्टम, तो पानी पानी हो जाती है ऐसी गलियाँ, बहुत ज़्यादा पानी होता था, मैं हसरत की निगाह से देख रहा होता था अपनी छत से, और बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं पानी में छड़प छड़प, मेरा भी बड़ा दिल करता था कि यार ये जो खूबसूरत सा ये मिट्टी की तरह का डार्क ब्राउन कलर का वाटर है ना जी, इसके अंदर मैं भी दौड़ू, मेरी अम्मा नहीं थी जाने देती, मैं फिर क्या करता, मैंने छत के ऊपर जो ड्रेन था ना उसे बंद करना और पानी ऊपर खड़ा कर देना, उससे मैंने तो इंजॉय करना, लेकिन छतों का खैर बेड़ा गर्क होता है, और जेन्युइनली होना, मेरी अम्मा को फिर पता चल गया जी घर की छत्त चाहदियां ने ना साडा मुंडा ही इहो जिहा खराब है, ये उत्ते पानी बंद कर देता है। कभी कभी मौका मिल जाना, मैंने भाग जाना पानी में नहाना, गंदे पानी में भी नहाने का अपना ही मजा है ना। तो अभी भी मैं बैठ देता हूँ लॉन में जाके, आई डू एंजॉय, आई वॉक, अगर अकेला हूँ फिर बच्चों वाली हरकतें करता रहे तो मेरे अंदर का बच्चा बाहर आने लग जाता है, अंदर की औरत तो बाहर आ ही रही होती है, बच्चा भी बाहर आने लग जाता है, फिर अजीब अजीब जब बाद में रियलाइजेशन होती है, व्हाट आई एम डूइंग मैन, लुक एट योरसेल्फ एंड व्हाट यू आर डूइंग, फिर कोई देख ले तो वो भी कहता है हाँ तुम्हारे अंदर तो औरत भी है, तुम्हारे अंदर तो एक बच्चा भी है। ठीक है ना यार, एंजॉय करना चाहिए इंसान को। इस तरह के ख्यालात फिर आपको आते हैं, आपके कमेंट्स मिलते हैं, यू एंजॉय देम आल्सो। कवल नास, कैसे हैं आप? आरजेडॉक्स, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? वेलकम जी आयन, बहुत शुक्रिया जी। हाँ आसिम, आपका शो हमेशा की तरह लाजवाब है। आरजे जी हाँ आसिम, थैंक यू वेरी मच, आपने तारीफ की। अल्हम्दुलिल्लाह मलखेल हैं, सलाम किया, वालेकुम सलाम, ग्रेट शो, थैंक यू वेरी मच। उमा शेख ने पसंद किया, लिसनिंग यू वेरी फर्स्ट टाइम, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप आरजे डॉक्स वाइफ। हाँ ये कहें कि 12 बजे का आपने शायद पहली दफा सुना हो। ओके फराब साल कहती हैं रात को अमनो है, अमो मन सुकून होता है, अमनो सुकून होता है, हाँ ये लफ्ज़ था। फिर सुकून वाले ख्यालात ही आ रहे होते हैं, या कोई याद जहन के दामन थामे होती है। ओए ओए क्या शायराना अंदाज है। या फिर दुआ होती है ज़बां पे कि अल्लाह पाक आगे का वक्त अच्छा रखे, आमीन। रात का वक्त गौर व फिक्र का, मुझे ऐसे एक दफा लगा मैं कह घोड़ों फिक्र का, अच्छा फिर बाद में मैंने गौर किया तो फिर पता चला एक्चुअली गौर ही है। रात का वक्त गौर व फिक्र के लिए अच्छा होता है अगर मस्बत हो तो। अच्छा जी सूरतुल मुजम्मिल में अल्लाह खुद भी फरमाते हैं कि दिन में तुम्हें और भी मशागिल होते हैं तो रात में थोड़ा कयाम और सुजूद कर लिया करो, फिर रब्बे कायनात भी तो बेहद करीब होते हैं। तो बेतहाशा सकून इंसान को किसी और जहां में ले जाता है। रात में अल्लाह ने खुद एक इसरार रखा है, तो शायद अपनी मखलूक की ट्यूनिंग भी ऐसी कर दी है, वो रात में बेहतर गौर व फिक्र करते हैं। अच्छी बात किया, दिस इज वेरी गुड थॉट, आई लाइक दिस थॉट जी। सलाम किया रियाज भट्टी साहब ने, वालेकुम सलाम। रईस जवेद एफएम 101 सर, यस ऑफ कोर्स इट इज 101। सैल्यूट टू ऑल लिसनर जी फ्रॉम हुमा शेख। मोहम्मद हमजा मूसा वाली पिपला से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। फरहीन शहजादी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके जनाब, कैसे हैं आप? हाल तो ठीक है, आप बताइए जनाब, आप खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं, तबीयत ठीक है, खाना शाना खाया आपने? ओके चौधरी साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। आंधियों से डरता हूँ, बारिशों से डरता हूँ, जब से मैंने डाला है एक मकान शीशे का। हाय हाय हाय क्या बात है, नहीं डालना चाहिए था शीशे का मकान जब पता था आंधी बारिशें होंगी। आज डॉक्स वाइफ कह रही हैं आप स्मार्ट हो गए, स्मार्ट नहीं कहते हैं, स्मार्ट हो गए, स्मार्ट। ओके अल्लाह सब प्रदेशियों को अपने घरों में खुश रखे, आमीन जी आमीन। खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया हुमा, थैंक्स वसीम मामू और फराजा चौधरी। अच्छा जी हाउ वेल यू स्पीक, आई एम नॉट श्योर हाउ वेल आई डू, यू टेल मी। मेरा ख्याल है सारे मैसेजेस मैं एक दफ़ा पढ़ ही दूँ। शमसी लिसनर रेडियो क्लब की तरफ से भी वेलकम किया गया जी, बहुत शुक्रिया। अमरजा चौधरी साहब ने मुझे चाय भेजी, बिस्किट भेजी, तस्वीर सी घाल दे हूँ तेनी घाल दे यार तुसी। ही ब्रेक्स माई हार्ट एंड टॉर्मेंट्स मी, ओके व्हाई डजंट ही गो अवे फ्रॉम माई हार्ट एंड ब्रेन, आई गो मैड इन लव विद हिम, आई कांट लिव विदाउट हिम, टॉर्मेंट्स मी आफ्टर ब्रेकिंग माई हार्ट। ये तो सोचने वाली बात है, ये मुझे बताए ना जरा कौन है, मैं उससे पूछता हूँ क्यों करता है ऐसे, पूछ लेने उन्हें, टेंशन नहीं लेनी। आजकल सब कहते हैं मैंने तुम्हें सब पर तरजीह दी है, पर असल वफा तरजीह देने से नहीं ठुकराने से पता चलती है। ओए हाय हाय हाय क्या कह रही है आज डॉक्स भाई बाप। ऐसा नली आए हैं सर, सलाम अलैकुम सर, आप खैरियत से हैं? ठीक है। अली रजा राणा आए हैं जनाब, आई मिस यू अ लॉट टुडे भाई, After a long time, अरे यार ना कर जानी ना कर ना बता, कल तू वीडियो भेज रहा था मैं रैकेट रहे, आज से मुझे बता रहा मैं जाके अकेला खेल भी आया बैडमिंटन, ऐसे मेरा क्राइम पार्टनर हम बैडमिंटन में मेरा प्लेयर और मेरा पहला शिकार बैडमिंटन का, जब पहले पहले शुरू शुरू में हमने खेलनी शुरू की तो शटल जो है पहली मरतबा सर्विस कर रहे थे, एहसन को मैं मना करता था पीछे नहीं देखना तुमने सर्विस जब मैं कर रहा हूँ। एहसन साहब ने पीछे देखा और बस वो सर्विस के बाद आई है शटल मेरे पास और मैंने स्मैश मारी। वो स्मैश खैर किसी ओपोनेंट को क्या लगनी, मेरे अपने ही खिलाड़ी जख्मी हो गया, इसकी आंख पे लगी। आंख जाया नहीं हुई, बच गई, जाया हो जाती तो ठीक सी है, तेरी अखा बढ़िया खराब है। बहरहाल आई लव द मेमरीज, आई लव यू बडी, आई मिस यू। जब अच्छा आज डॉक्स वाइब के मैसेज है, जब सामने वाले के पास बेहतर ऑप्शंस हो, नए लोग हो, आसानियां हो और फिर भी वो तुम्हें ही चुने, तुम्हारी खामियों के साथ तुम्हारे बुरे दिनों में भी वफा शोर नहीं मचाती, वो रोज छोटी छोटी चीज़ों में नजर आती है, तुम्हारी बात याद रखना, तुम्हारा मिजाज समझना और जब दुनिया बदल जाए तब भी ना बदलना। क्या कह रही हैं आप चावे? इंशाल्लाह सी यू सून बड़ी। यार आते हुए ना एक दो चीज़ें वो ले आई इस दफ़ा है, मैं तो बता दूंगा, खाली हाथ ना ही वो ना ले के आई जो पिछली दफ़ा ले आए, वो पे है बस ठीक है। हेलो, बाकी कान बंद कर ले जरा, यू नो बॉयज टॉक चल रहा, मेरा हो जा मुझे यार मुकम्मल कर दे या मुझे छोड़ दे इनकार मुकम्मल कर दे, तू जो खुश है तो यही बात मुझे है काफ़ी, जीत जा मुझसे मेरी हार मुकम्मल कर दे। क्या बात है, क्या बात है, जरियाब हसन पटी साहब कैसे हैं आप? ख्यालात पे बात चल रही है, आपको रात को अक्सर ख्यालात आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, किस तरह के आते हैं और क्यों आते हैं, इसकी क्या वजह है? और अभी यहाँ पे मैं एक गाना लगाऊंगा और उसके बाद आके फिर आपसे गुफ्तगू का सिलसिला इसी पे जारी रखते हैं। तो आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, अगर इंटरनेट की रसाई नहीं है आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना 4471 पर। और इसके अलावा आप मेरी स्टैटिक पोस्ट है FM 101 लाहौर पर सर्च करें, FM 101 चैनल पाकिस्तान पर सर्च करें तो वहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी। यू कैन हिट मी विद योर कमेंट्स एंड मेरी लाइव है जी RJ_DOX डॉक्स, वहाँ पे भी सर्च करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरे बड़े अच्छे भाई हैं आज एहसन, मेरे साथ शो भी करते रहे, वो सुन रहे हैं, इसके अलावा बाबर हैं वो सुन रहे हैं, बाबर बड़ा अच्छा बड़ी है मेरे जी। जो फेसबुक का कवर वगैरह आप देखते हैं ना जी, फेसबुक के पेज के ऊपर, यूट्यूब पे, इधर उधर, ये सारा डिज़ाइन बाबर ने करके दिया था मुझे। अगर आपको ये लगता है, ये गुमा है कि ये शायद मैंने किया, कतन मैंने नहीं किया, एड्डा में शियार होंदा तो इत्थे होंदा। हाय बाबर कहते हैं, अगर आप रात के आखिरी पहर में अपने महबूब को याद नहीं कर रहे तो आपने रात का हक अदा नहीं किया। ओए ओए लड़के, क्या कह दिया तुमने, क्या कह रहे हो तुम, पक्की बात है? चलो फिर गाना सुनाते हैं तुम्हें, जो उनको एनी वे जी। और आई जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। अगर हम फलसफे की बात करें ना, जाते जाते ये बात किए जाते हैं, फलसफे के मुताबिक रात सिर्फ महज अंधेरे का नाम नहीं होता, थोड़ी सी थॉटफुल डिस्कशन है ऐसी। गाना भी सुन ली और ताकि आप ज्यादा बोर ना हो, मैं फलसफा सुनाना शुरू करूं। महज अंधेरे का नाम नहीं होता, फलसफा कहता है कि दिन भर आप मुख्तलिफ तरह के किरदार अदा करते हैं, किसी जगह बाप के, किसी जगह बेटे का, बेटी का, बहन का, भाई का, दोस्त का, रिश्तेदार का, हम सफर का, साथी का, बंदी का, बंदे का। लेकिन रात जो होती है ना, उसमें ख्यालात, आपकी तमाम तर तवज्जुहात, योर अटेंशंस, ये सारी की सारी आपकी ज़ात की तरफ लौट आती हैं। फिर आप देखना शुरू करते हैं, अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने आप को देखते हैं और अपने फैसलों के बारे में जानते हैं, क्या मैंने ये फैसला ठीक किया, क्या मैंने किसी जगह पे गलत किया, कौन सी चीज़ ठीक थी और कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में गलत हुई, और क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए थी। और ख़ास तौर पर अपने किए फैसलों पर ज़रूर सोचते हैं, और अगर किसी फैसले से आप खुश हैं तो उस बारे में सोच के आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर के लिए फिर सोचना शुरू करते हैं। दिस इज़ व्हाट फलसफा सेज़ अबाउट ख्यालात, और कहता है कि ये बड़ा इंसानी फेल है, इंसानी अमर है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप कहें कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। तेरा मुखड़ा हसी,
1: तेरा मुखड़ा हसी
0: जादू कर गया। यार I love this track, yeah, it's relatable. One and it's 118 AM. 23 जुलाई 2026 का सेना डोंगो है नहीं भैया। हाँ तेरे जैसी मिली कोई ना। जादू कर गया। जो है नंबर जाड़ा नहीं है, बड़ा मजेदार गाना है।

हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 1:40, 16 निकलने लगा था यार, आंखें भी काम नहीं कर रही मेरी, मैं किधर घूमूं। 23 जुलाई 2026 है और मैं हूँ आज डॉक्स, आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी, और जिसमें आपका मेरे साथ होता है बुधर जुमे रात की शब 10 से 12 बजे तक। लेकिन आज क्योंकि रहमान नहीं आए, इस वजह से मैं 10 से 12 नहीं आया, मसरूफियत की वजह से, और अभी मैं हूँ 12 से 2 आपके साथ, और आपका मेरे साथ होता है वैसे 10 से 12 बुधर जुमे रात की शब। और आज मैंने सवाल पूछा कि हमारे जहन में लेटने के बाद बहुत सारे ख्याल आते हैं रात को, अक्सर सोने से पहले, ये क्यों आते हैं? और उस पर मैंने आपसे सवाल पूछा और आप लोगों ने बहुत मज़ेदार बातें की हैं, एंड आई लव दैट, आई लव एवरी सिंगल थिंग, और मुझे अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच। और ख्यालात आने की आपने बहुत सारी वजूहात बताई, मैंने भी बहुत कुछ आप लोगों से सीखा। हमारे एक आरजे भाई आए थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा डिफाइन किया, अली रज़ा गालिबन है, यस अली रज़ा राणा है, हमें सुन रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मशहूर हूँ जनाब, आपका पैगाम मिला और आपने इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया, आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। ओके, आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड आज, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए उन्होंने सुना और मैसेज किया कि आपको सुना आज बड़े अरसे के बाद, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच यार फैजान, थैंक यू लॉट्स ऑफ लव ऑफ कोर्स। अच्छा, आरजे निमरा है, उन्होंने को मैसेज भेजा और डिलीट कर दिया, कहा आपका मौजू संजीदा है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसे तो नहीं है। और गैर संजीदा के

भी बातें मेरे शो में। अच्छा तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आपके पैगामात मुकम्मल करते हैं फिर जाने का वक्त भी होगा। यू आर लुकिंग ओके, थैंक यू सर, पुराना मैसेज है। आबिश सरताश, अलग मिजाज के लोगों से बात करनी पड़ी, हम और लोग थे, औरों से बात करनी पड़ी। उस एक शख्स से बातों का शौक पैदा हुआ, जो साथ बैठे थे सारों से बात करनी पड़ी। हाय हाय, सही बात है, बहुत अच्छा। अलग मिजाज के लोगों से बात करनी पड़ी, हम और लोग थे, औरों से बात करनी पड़ी। उस एक शख्स से बातों का शौक पैदा हुआ, जो साथ बैठे थे सारों से बात करनी पड़ी। किसी से तर्क ताल्लुक से पहले खुद से मुझे तरह तरह के हवालों से बात करनी पड़ी। वो बेबसी थी कि आंखें थी आसमां की तरफ, तमाम रात सितारों से बात करनी पड़ी। ये फासला था या रंजिश, जरा बता तो सही कि मेरे बारे में लोगों से बात करनी पड़ी। फिर आज जागने वालों की आस खत्म हुई, फिर आज शब उन्हें ख्वाबों से बात करनी पड़ी। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बेसिकली एक सादा से और शफीक से इंसान है, अल्लाह पाक आपकी सादगी कबूल करे, हाईली रिस्पेक्टेड, खुश रहें हमेशा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मैडम फरा, आपने इतने प्यारे अल्फाज बोले जबकि आई डोंट डिजर्व देम। थैंक यू वेरी मच मीसम, इतनी अच्छी बातें करते हैं आप, थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छी लगती हैं और इनके बारे में अक्सर मैं कहा करता हूँ, अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी लगती है, अपील करती है, तो इसको सिंपल से मेरी नज़र में, मेरी अपनी एक थ्योरी है कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर मौजूद होती है। तो मैं जब उसे लफ्ज़ों की शक्ल में दे के आपके सामने रखता हूँ, लफ्ज़ों का पैराहन के साथ लिबास पहना के, तो आपको वो पसंद आती है। सो ये आपकी बात है, मेरे लफ्ज़ों में महज बयान होती है। सलमान चांडियो साहब ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वारा मिर्चा ते चुल्ले वेच पावा के तेनू नजर ना लगे, मैनू एवं लगा कहन लगे हो तुसी वारा मिर्चा ते चुल्ले वेच पावा तेनू मतलब मिलने ही चुल्ले च पा देना तुसी हाँ तेनू नजर ही लगे, मैं तेनू ही साड़ देवा, नजर लगन दा रौला ही मुक्के। ये भी अच्छा तरीका है वैसे सलमान चाटिया साहब कहते हैं जी, लवली वॉइस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बडी, लॉस ऑफ लव। और हसन ने रहमान के लिए दुआ की, थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग भाई, थैंक यू वेरी मच। आप भी मुस्कुराते रहे, आपकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है। हसन अली ने मैसेज किया, थैंक यू वेरी मच, तुम तो उसकी बाहों में लिपट जाते होगे, आहो क्या अंदाज है यार आपका मुझे पढ़ के भी हंसी आई आगे से, बस हाँ मैं भी मजा ले लिया। तुम तो उसकी बाहों में लिपट जाते होगे और जो रात मेरी गुजरती है उसका क्या, हुए हुए क्या कह रहे हैं आप, शदीद किस्म की जुदाई है ये, तकलीफ दे जुदाई है। शुक्रिया मेरी तहरीर शामिल करने के लिए राना साहब, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, माजी के ख्यालात भी होते हैं मगर ज़्यादातर वो ख्यालात होते हैं जिनको खुद हम अपने ऊपर हावी करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच माजवीन। डॉग्स, नींद ना आना डिप्रेशन की अलामत है, बिल्कुल डिप्रेशन की अलामत होती है। और डिप्रेशन जो है सिंपल ये नहीं होता कि वो जो हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि डिप्रेशन एक बहुत बड़ी को बीमारी है, अक्सर टेम्परेरी भी होते हैं ना, आपकी एंजाइटी जैसे ट्रिगर होती है फॉर सर्टेन टाइम इन सर्टेन सिचुएशंस। डिप्रेशन भी सम टाइम ऐसे होता है, किसी एक सर्टेन बात पे आपको ट्रिगर हो जाता है, मतलब सो मच डीप इन टू योर थॉट्स। कभी आप किसी के एक्साइटमेंट भी आपको जगा के रखती है और उलझन भी आपको जगा के रखती है, क्योंकि आपका जहन तो सोता नहीं, तो वो रात को जब हम सो जाते हैं वो ख्यालात को तरतीब देता है, और जब हम उठते हैं वो तरतीब शुदा ख्यालात हमारे सामने होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज हम करते हैं, सुबह पहला ख्याल बन के हमारे सामने आ जाते हैं। और बिनते हव्वा ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी, आप भी आई हैं। और अरीजा दानियाल,
फ्राम इस्लाम आबाद, ठंडा पानी, थैंक यू वेरी मच। और कहती हैं फ़र्स्ट टाइम मैसेज किया आपको, बहुत अच्छा शो करते हैं माशाल्लाह, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, आपका हुस्न समात अब इंत हुआ और आई एम रियली वेरी ऑनर्ड कि आपने पहली मरतबा मैसेज किया मेरे शो में। आर जे अली रज़ा सर जी, मैं अब तक आपको सुन रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आर जे डॉक्स वाइफ ने कहा हाय, मैं भी कहना हाय, मैं कहता हूँ हेलो। अच्छा आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ फटाफट मैसेजेस, ताकि भर गिला ना रहे। अली मैसेज करते हैं सर इसके बाद पश्तो सॉन्ग चलाते हैं। ओके सर चला देते हैं। अब्दुल्लूर हाशमी साहब, दरवेश शायर सागर सिद्दीकी की बरसी है, उनकी गज़ल प्ले कर दें, आवाज़ मेहदी हसन साहब की, चराग तूर जलाओ बड़ा अंधेरा है। अच्छा मैं अब कमिट कर चुका हूँ पश्तो सॉन्ग। सैफुर रहमान है, मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी मैं सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। आहा बहुत आला, मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी मैं सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे। यार बहुत अच्छा थॉट है। एंड सागर सिद्दीकी साहब एक बिलाशुबा एक बहुत बड़ा नाम है शायरी में, और बहुत गहरे थॉट रखने वाली पोइट्री इनकी है, एंड अनडाउटेडली वी ऑल लव देम जिनको तारुफ है। हसनैन अहमद मुल्तान से नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई सॉन्ग चला दें कल से। यार इस्लाम किया खलील रहमान साहब ने कहते हैं और अक्जय एजेंसी से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ख्यालात असल में हमारी, ये सर वसीम साहब तशरीफ लाएं, कहते हैं ख्यालात असल में हमारी ख्वाहिशात होते हैं जो कि खामोशी में शोर मचाते हैं, शोर कर देते हैं भाई कोई पश्तो भाई कोई, चला देंगे सर चला देंगे। इमरान कैसरानी है पिशावर से, सिटी प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, इंशा जी उठो है यार, करते हैं थोड़ा सा इंशा जी चला के ना फिर पश्तो चला दूंगा। असद अली है मेरा हम नाम बंदा है, लाहौर से आपका शो सुन रहा हूँ, अल्लाह आपको सलामत रखे सर, थैंक यू वेरी मच, आपके लिए मोहब्बत है बहुत सारी। और अंजुम फ्रॉम लाहौर, डॉग सर आप बहुत हैंडसम है, अस्तग़फ़िरुल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव आपके लिए, आपकी आवाज़ का तो क्या कहना, बहुत अच्छा बोलते हैं आप सर, आपकी मोहब्बत यकीन जाने अल्लाह ने आप सबको हुस्न नज़र दिया है, और यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं, हुस्न समात दिया है। और आप सारों के लिए वही बात है कि जब आप शीशा देखें आपको दुनिया का हैंडसम तरीन बंदा नज़र आए शीशे में, मेरी ये दुआ है, और आप मुस्कुराते रहें। इकराम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, ख्याल यार को क्या कहिए, बेवजह चला आता है, बनकर दिल आईना तेरी तस्वीर सजा जाता है, जिक्र यार करूं जब जब मेरा हर्फ हर्फ दुआ बने, मेरा लफ्ज लफ्ज जोड़ कर तहरीर बन जाता है, जोड़ कर तहरीर बन जाता है, बहुत अच्छा। कामरान लाहौर से, आज डॉक्सर कैसे हैं, आई लव पाकिस्तान, आई लव माय कंट्री एंड आई लव पाकिस्तान मोस्ट, पश्तो गाना चलाएंगे इमरान, बहुत शुक्रिया। असद अली लाहौर से, जनाब आपका शो आपका ये शो कैसे इतना अच्छा करते हैं, पता नहीं यार आप सुनते हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। एक शेर है, चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पाँव के छालों से कितनी दूर, बसाली बस्ती दिल में रहने वालों ने, जनाब सब सुनने वालों को सलाम, बहुत अच्छा है, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, माजी के नाकाम ख्यालात और मुस्तकबिल के खदशात बहुत तंग करते हैं, नवीद अंजुम, गुड नाइट। ओके पेशावर से आपने मैसेज किया, लॉस ऑफ लव फॉर यू, इतने लोगों ने मुझे पैगामात भेजे हैं, SMS किए हैं, आई एम रियली वेरी ऑनर्ड। और जितने इस वक्त मुझे SMS आए, मैं सोच रहे हैं प्रोग्राम ही रात ही करना शुरू कर दूँगा। वसीम साहब भी बाहर बैठे सुन रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यार रहमान के शो में इतने SMS आ जाए हैं ना मुझे, आई एम रियली वेरी हैप्पी जी, जिंदगी जी, हाय हाय। इस्लाम किया, नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है आपकी। नदीम खान, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। जलील मस्तोई, अस्सलाम वालेकुम। रहीम यार खान से सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। राजा आजम है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं। अमरीन लाला, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। बरकत जमाली साहब, बहुत शुक्रिया। नौशीन राशिद हैं पेशावर,
से, इस्लाम सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, सारिम है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम अली हैदर जुने जो है, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। और वालदैन की याद हमेशा आती है, मजिया कहती हैं थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल ऐसी है, मुझे भी आती है और मेरे अब्बा की वैसे भी बरसी आ रही है। और दैट इज़ ऑन सैटरडे, आई डू मिस माई अब्बा। वकास कहते हैं क्या हाल है? मेरा हाल अच्छा है, आप बताएं आप कैसे हैं? एंड हैंडसम ब्रदर मंजिल आ गई, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आरजे अली रजा सर थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है। हूँ मैं, मेरा ख्याल है आप ही जाके चूल्हे छाल मार दो। अल्लाह आप सबको यार खुश रखे, मुझे आज शर्मिंदा कर दिया आपने, यकीन करें बहुत शर्मिंदा किया है, ऐसा नहीं है, आई रियली फील दैट। आप सबकी मोहब्बत है, जाते जाते बस इतनी सी बात है, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे छिन जाती हैं, और इंसान पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाता है और क्या से क्या किए जाता है, और हमारे पास ना जाने करने के लिए क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें, आपकी ज़िंदगी आपके ख्यालात का मजमूआ है, आपके अमल, आपके एक्शंस या आपके ख्यालात से तरतीब पाते हैं या एक्शंस के बाद ख्यालात में ढल के सामने आते हैं और ख्वाहिशात की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, माजी के लें या मुस्तकबिल के। मसला ये है, प्रेजेंट को हम इस सारे मामले में इंजॉय नहीं करते। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अर्ज़ ये है, आप कुछ भी करें, मुस्तकबिल एक मतलब फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री, पास्ट इज़ हिस्ट्री एंड टुडे इज़ प्रेजेंट, टुडे इज़ सरप्राइज है, एक गिफ्ट है, इसलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं ना। तो हम माजी मुस्तकबिल में तो कहीं रहते हैं, हम आज के दिन को नहीं जीते। अगर हम आज के दिन को जीना शुरू करें तो सोने से पहले ख्याल ये होगा कि आज का दिन मैंने कैसा गुजारा, और इससे बड़ा ख्याल कोई नहीं। आज के दिन मैं किससे मिला, कैसा रहा, और कल के दिन उठूंगा तो देखी जाएगी, मुस्कुराते हुए सो जाए। परेशानी हो, उलझे हैं, ख्यालात को लिखें उलझाने वाले, और किसी एक सफ़े पे लिखें, एंड ट्रस्ट मी प्रैक्टिकली इसको करके देखें और उसको आग लगाएं, अपने सामने उनको जलता हुआ देखें। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है, आपको बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन जीना आज में सीखें यार, लाइफ वन वे रोड है, वापसी कोई चक्कर नहीं है, और वन वे रोड को जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय कर लें आप। इसके बाद ये वक्त गुजर गया वापस नहीं आएगा, आज का गुजरा दिन भी वापस नहीं आएगा। मेरे पास बेशुमार यादें हैं आज के हवाले से, गुजर गया सो गुजर गया, इट्स नॉट कमिंग बैक, यस बिल्कुल नहीं आएगा। और गाना कौन सा लगाएंगे हम? गाना लगाते हैं कोई पश्तो, अच्छा सा गाना लगाते हैं जी। वेरी गो, एंजॉय द नंबर, एंड दिस इज़ आजे डॉक्स। मुझे आप इजाज़त दीजिए इन्हीं अल्फाज के साथ कि चल करें, एंजॉय करें, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, आता है, टाइम गुजर जाता है, गुजर जाता है, बस रिमेंबर दिस। और ये चंद लाइनें मैं चला देता हूँ पहले इंशा जी उठो की, जिन भाई ने दो दफ़ा मुझे मैसेज किया, और उसके बाद स्विच करूँगा पश्तो गाने पे, एंड देन आई गो, डोंट गो एनीवेयर। आर जे वसीम अहमद साहब मुंतजर हैं आपके। नमान अब्बासी मेरा भाई कैसा है? माशाल्लाह क्या बात है, कैसा है नुमान बड़ी, काफ़ी टाइम बाद, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये बात कहते शर्म नहीं आ रही तुम्हें? और सोने से पहले अगर कुछ याद करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लो तुमने दिल खोल के जी लिया है, है ना, बहुत जिया है। एनीवेज टेक केयर, बाय बाय, मुलाकात होती है कल 10 से 12 इंशा जी, उठो के चांदशार, फिर पश्तो गाना।

0: आपने FM 101 ट्यून किया, शुक्रिया। आपने FM 101 ट्यून किया, शुक्रिया। आपने FM 101 ट्यून किया,
1: शुक्रिया। आपने FM 101 ट्यून किया।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शगल है बेकार लोगों का। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शगल है बेकार लोगों का। तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है, तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है। खलिश दीमक सदे और आंख पर वो सीधा सतरों का जखीरा है, तलब सूखे हुए पत्तों का बेरौनक जजीरा है। खलिश दीमक सदा और आंख पर वो सीधा सतरों का जखीरा है। हमारे वसल तपती धूप के सीने पे उड़ते बादलों की रायगानी बख्शिश, हमारे वसल तपती धूप के सीने पे उड़ते बादलों की रायगा बख्शिश। हमारे हिजर सहरा में सराबों से आए मौसम का खमियाजा। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो कि अब तक मैं अंधेरों की धमक में सांस की जरबों पे चाहत की बिना रखकर सफर करता रहूंगा। मुझे एहसास ही कब था कि तुम भी मौसमों के साथ अपने पैरहन के रंग बदलोगी। चलो छोड़ो कि अब तक मैं अंधेरों की धमक में सांस की जरबों पे चाहत की बिना रखकर सफर करता रहूंगा। मुझे एहसास ही कब था कि तुम भी मौसमों के साथ अपने पैरहन के रंग बदलोगी। चलो छोड़ो वो सारे ख्वाब कच्ची भुरभुरी मिट्टी के लिए कीमत गुरौंदे थे, वो सारे जायके मेरी जुबान पर जख्म बनकर जम गए होंगे। तुम्हारी उंगलियों की नर्म पोरे पत्थरों पर नाम लिखती थी मेरा, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तो आदतन ये जुर्म करती थी। तुम्हारी उंगलियों की नर्म पोरे पत्थरों पर नाम लिखती थी मेरा, लेकिन तुम्हारी उंगलियां तो आदतन ये जुर्म करती थी। चलो छोड़ो, चलो छोड़ो सफर में अजनबी लोगों से ऐसे हाथ से सरजद हुआ करते हैं सदियों से। सफर में अजनबी लोगों से ऐसे हाथ से सरजद हुआ करते हैं सदियों से। चलो छोड़ो मेरा होना ना होना एक बराबर है, चलो छोड़ो मेरा होना ना होना एक बराबर है। तुम अपने खाल व खत को आईने में फिर निखरने दो, तुम अपने खाल व खत को आईने में फिर निखरने दो, तुम अपनी आंख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो, मेरे ख्वाबों को मरने दो, नई तस्वीर देखो फिर नया मकतूब लिखो, फिर नए मौसम नए लफ्जों से अपना सिलसिला जोड़ो। मेरे माजी की चाहत रायगा समझो, चलो छोड़ो मेरा होना ना होना एक बराबर है। तुम अपने खालो खत को आईने में फिर निखरने दो, तुम अपनी आंख की बस्ती में फिर से एक नया मौसम उतरने दो, मेरे ख्वाबों को मरने दो, नई तस्वीर देखो फिर नया मकतूब लिखो, फिर नए मौसम नए लफ्जों से अपना सिलसिला जोड़ो। मेरे माजी की चाहत रायगा समझो, मेरे माजी की चाहत रायगा समझो, मेरी यादों से कच्चे राब्ते तोड़ो। चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शगल है बेकार लोगों का।
चलो छोड़ो, मोहब्बत झूठ है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामईन, 101 FM पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से ये आवाज़ है आपके अपने मेज़बान वसीम अहमद की। तमाम खूबसूरत समातों को प्रोग्राम गुंचे शौक में मेरा बहुत बहुत मोहब्बत भरा, खुलूस भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। रात का ये पहर रात का आखिरी पहर होता है और इसमें हमारा आपका साथ होता है सुबह के 4 बजे तक। अगर आप अभी तक जाग रहे हैं और प्रोग्राम को सुनने के लिए बैठे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए जब हम स्टूडियो की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो शाम से ही पूरी कोशिश और एक अजीब सी क्या कहूँ मैं, खुशी जो होती है वो, और साथ साथ दिमाग में थोड़ी सी उलझन भी होती है कि पता नहीं आप लोग सुनते भी हैं कि नहीं सुनते, क्योंकि रात के 2 बजे का वहर जो होता है वो गहरी नींद आ जाती है इस टाइम पे। तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आपकी बेशुमार कॉल्स भी हम तक पहुंचती हैं, आपके बेशुमार SMS हम तक पहुंचते हैं, आपके बेशुमार जो हैं कमेंट्स हम तक पहुंचते हैं फेसबुक पे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 101 FM के नेटवर्क पे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ भी 101 FM के रेडियो स्टेशंस मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के, वहाँ वहाँ पे हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। इसके साथ साथ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग भी जा रही है जो कि पूरी दुनिया में जा रही है, तो ये इंटरनेशनल शो आप इंजॉय कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर स्टेशन से। और मैं आपका मेज़बान वसीम अहमद आपके साथ मौजूद होता हूँ हर बुध और जुमेरात की शब रात 2 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को सुनते हैं और उसमें ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट भी करते हैं। सबसे पहली बात ये कि क्योंकि ये शायरी के ऊपर बेस करते हैं प्रोग्राम, तो आपकी पोइट्री का मुझे इंतज़ार होता है कि जब आप आए तो आप अपने साथ अपनी खूबसूरत शायरी लेके आए, और जब आपकी शायरी प्रोग्राम में शामिल होती है तो प्रोग्राम और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। कुछ छोटा सा टॉपिक भी होता है ताकि हम उसके ऊपर बातचीत भी कर सकें, और दिल की बातें जब हम एक दूसरे से करते हैं तो यकीन मानिए वक्त का पता नहीं चलता कि किस तरह से वो जो 2 घंटे हैं वो एक ऐसे लगता है कि जैसे चंद सेकंड्स में ही वो वक्त गुजर गया। इसीलिए कहते हैं कि जब मोहब्बत जवान होती है, जब मोहब्बत होती है तो वो जो वक्त होता है वो चाहे 1 मिनट का ही हो वो सदियों पे मुहित होता है, और वो सदियों का वक्त हो तो वो 1 मिनट के ऊपर मुहित हो जाता है, मतलब 1 मिनट के अंदर गुजर जाता है। वैसे लगता है कि जैसे अभी हम मिले थे और अभी हम जुदा हो गए, जबकि वो बहुत लंबा अरसा गुजरा होता है। इसी तरह से इसके उलट हमारी फीलिंग भी होती है कभी कभी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, तो वक्त दरमियान में से कहीं माइनस हो जाता है, और ये वक्त तभी माइनस होता है, तभी दरमियान में से वक्त निकल जाता है जब दिल के अंदर सच्ची चाहत, सच्ची मोहब्बत हो। हम जिस किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, जब हम उसके पास बैठते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। कोई अच्छी चीज़ जो जिसमें हमारी दिलचस्पी होती है, कोई फिल्म देखते हैं, कोई ड्रामा देखते हैं, तो यकीन मानिए अगर वो इंटरेस्टिंग है, हमारी दिलचस्पी है उसमें, तो वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो वक्त कितनी जल्दी कैसे गुजर गया। इसी तरह से उसकी यादें साथ रह जाती है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई हमसे मोहब्बत करते हैं, तो वो वक्त चाहे कितना ही तवील क्यों ना हो वो बाद में महसूस होता है कि जैसे 1 सेकंड में 1 मिनट में ये गुजर गया सारा वक्त। और कभी कभी हम 1 मिनट के लिए मिले होते हैं मगर उसकी यादें इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि हमें लगता है कि हम पता नहीं कितने साल, कितनी सदियाँ उस खूबसूरत लम्हे में गुजार के आए हैं। सब कुछ साकत हो जाता है, सिर्फ वो और हम सिर्फ उस लम्हे में मौजूद होते हैं,
बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप और मैं इस वक्त इस लम्हे में मौजूद हैं। मसला सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, मसला सिर्फ मोहब्बत नहीं होती बल्कि ना ही जिद भी होती है, जिद भी नहीं मसला होती, ना ही खूबसूरती हुस्न न जहानत न अना और ना ही एक इंसान, इनमें से कोई भी चीज मसला नहीं है। मसला क्या है? लातादाद और बेहतरीन लोग, खूबसूरत लोग हमें मुतबादल के तौर पर दस्तियाब होते हैं। लातादाद और बेहतरीन लोग, वो इंतहाई खूबसूरत लोग जिनको देख के इंसान का सांस रुक जाता है, उनके ख्वाबों के अन मुताबिक जो वो चाहता है उतने ही खूबसूरत वो लोग उसे मिलते हैं मुतबादल के तौर पे, उसका सब्स्टिट्यूट होते हैं, दस्तियाब होते हैं और वो आपके तलबगार भी होते हैं, वो आपको चाहते भी हैं, आपका होना भी चाहते हैं। तो फिर मसला क्या है? मसला क्या है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री ये है कि जो उस इंसान के साथ जो महसूसात होते हैं, जो महसूस हम उस इंसान को अपनी रूह के साथ कर चुके होते हैं, बस वही कमी हमें बेचैन रखती है, वही मसला वहाँ पे मौजूद रहता है। इसलिए कहते हैं कि जब मोहब्बत हो जाती है तो फिर हो जाती है, और मोहब्बत जो है जब हो जाती है तो फिर उसके अलावा, अपने महबूब के अलावा कोई शख्स हमें उतना अच्छा नहीं लगता, उसका मुतबादल हमें नहीं चाहिए होता, उस जैसा भी नहीं चाहिए होता, वही चाहिए होता है। और मोहब्बत के अंदर ये एक और चीज है, नसीब के अंदर आमतौर पे ये कहा जाता है कि जिससे मोहब्बत होती है वो आमतौर पे हमारे नसीब में नहीं होता। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या वाकई ऐसा है? ये सिर्फ बातें बनाने की हद तक बात है। सुनते रहिए एफएम 101 अपने मेज़बान वसीम अहमद के साथ। आज के प्रोग्राम में आपकी ऑफ एयर कॉल्स भी शामिल नहीं होंगी, लाइव कॉल्स भी शामिल नहीं होंगी, कोई टेक्निकल इशू है तो, अगर तो ये टेक्निकल इशू हमारे प्रोग्राम के दौरान में ठीक हो गया तो ठीक, आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, वरना आपके एसएमएस का मुझे इंतज़ार रहेगा। एसएमएस करने के लिए आपने क्या करना है कि 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम पैगाम लिखना है और उसे भेज देना है अपने पसंद के खूबसूरत शेर के साथ, अगर पॉसिबल हो तो, कोई शेर लिखा जा सकता हो तो लिख दीजिएगा और उसे आप फॉरवर्ड करें, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, उसे सेंड करेंगे 4471 पे, यानी 4471 पे आपका मैसेज मुझ तक पहुँचेगा, एसएमएस पहुँचेगा। आप टाइप करेंगे 101, उसके बाद स्पेस देंगे, अपना पैगाम लिखेंगे और भेज देंगे 4471 पे। और फेसबुक का पता है www.facebook.com/fm101 लाहौर, दोबारा सुन लीजिए www.facebook.com/fm101 लाहौर। और जैसे ही आपके पैगाम प्रोग्राम में पहुंचते हैं तो प्रोग्राम की जो खूबसूरती होती है वो यकीन मानिए आपकी खूबसूरत स्माइलों की तरह, स्माइल्स की तरह, खूब आपकी खूबसूरत मुस्कुराहटों की तरह जो है वो हमारे प्रोग्राम में के चारों तरफ फैल जाती है, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आसमान पे जो सितारे हैं वो लपक के हमारे पास आ गए हैं, हमारे हाथों के पास आ गए हैं और हम उनको अपनी आँखों के बहुत करीब महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से कि सहरा की जो रात होती है वो उसमें आसमान जो होता है वो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे बिल्कुल करीब आ गया है, जैसे हम हाथ बढ़ाएंगे तो उन सितारों को हम पकड़ लेंगे जो कि बहुत भरपूर तरीके से टिमटिमा रही होती हैं, हमारे आंखों के सामने होती हैं, जबकि शहरों में हमें ऐसा मंजर दिखाई नहीं देता ड्यू टू पोल्यूशन। एनीवेज 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, प्रोग्राम में हम एक टॉपिक भी लेके आते हैं उसके ऊपर भी आप बातचीत कर सकते हैं, मगर आपके एसएमएस का और आपके जो
फेसबुक के पैगामात हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं चाहूँगा कि आप भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करें ताकि प्रोग्राम खूबसूरत होता चले। आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी शायरी मेरे पास मौजूद है, अगर आप शायरी को सुनना चाहते हैं तो सुनते रहिए बुनबुन एफएम पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो के प्रोग्राम गुंजाए शौक को। आज के प्रोग्राम का टॉपिक, जब हमने मोहब्बत की बात की है तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी ये है कि क्या मोहब्बत इंसान को आज़ाद कर दी है या फिर किसी एक शख्स का असीर बना देती है, किसी एक शख्स का करके रख देती है, किसी एक शख्स का कैदी कर देती है। क्या मोहब्बत इंसान को आज़ाद करती है या किसी का कैदी बना के रख देती है? आप क्या कहते हैं? क्या मोहब्बत के अंदर ऐसी ताकत है कि वो किसी को अपना कैदी बना दे, असीर बना ले? इस हवाले से अगर आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल करूंगा एक और खूबसूरत कलाम, उसके बाद आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत मेरे पास मौजूद, उसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड, सुनते रहिए एफएम 101 अपने मेज़बान वसीम अहमद के साथ। वक्त बताता चलूँ कि 2:31 हो चुके हैं।

भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें। सहरा मेरा चेहरा है तो समंदर तेरी आंखें, भड़काएं मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें। सहरा मेरा चेहरा है तो समंदर तेरी आंखें, फिर कौन भला दादे तबस्सुम इन्हें देगा, फिर कौन भला दागे दादे तबस्सुम इन्हें देगा। रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें, फिर कौन भला दादे तबस्सुम इन्हें देगा। रोएंगी बहुत मुझसे बिछड़ कर तेरी आंखें, भूझल नजर आती हैं बजाहर मुझे लेकिन, भूझल नजर आती हैं बजाहर मुझे लेकिन, खुलती हैं बहुत दिल में उतर कर तेरी आंखें। अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें। अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता, भीगी हुई एक शाम का मंजर तेरी आंखें। मुमकिन हो तो एक ताजा गजल और भी कह लूं, मुमकिन हो तो एक ताजा गजल और भी कह लूं, फिर ओढ़ न ले ख्वाब की चादर तेरी आंखें। यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, यूं देखते रहना उसे अच्छा नहीं मोहसिन, वो कांच का पैकर है तो पत्थर तेरी आंखें। भड़काए मेरी प्यास को अक्सर तेरी आंखें, सहरा मेरा चेहरा है तो समंदर तेरी आंखें। और वन एफ एम पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। कुछ आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं फेसबुक के ऊपर, मगर उनकी तादाद बहुत कम है, चूँकि रात का वक्त काफ़ी गहरा हो चुका है और बारिश की वजह से मौसम जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, मगर इस वक्त जो हब्स है वो काफ़ी है लाहौर में, और मगर फिर भी जो मौसम है उसने जो गर्मी की जो तपश थी उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा पोइट्री आपकी प्रोग्राम में शामिल करें। अगर आप अपनी पोइट्री हमें सेंड करेंगे तो यकीन मानिए प्रोग्राम खूबसूरत हो जाएगा। प्रोग्राम में जनाब हमारे शामिल हैं इस वक्त फेसबुक के ऊपर चंद लोग, उनके नाम आपको बताते हैं कि जी उन्होंने महजबी हैं, महजबी आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। अली रज़ा राणा, अली रज़ा राणा हमारे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं। अली आतिफ अली और ताहिरा मसूद, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को लाइक करने के लिए, और आपके जो कमेंट्स हैं जो आपके पैगाम हैं वो इस वक्त सबसे पहले ताहिरा मसूद हैं हमारे प्रोग्राम में, इन्होंने हमें पोइट्री भेजी है। इस दुनिया में यूं तो मिले हैं प्यार के दावेदार बहुत, इस दुनिया में यूं तो मिले हैं प्यार के दावेदार बहुत, मुश्किल में काम एक ना आया देखे हमने यार बहुत। प्यार की राहें अव्वल अव्वल सहल दिखाई देती थी, आखिर आखिर इल्म हुआ ये मंजिल है दुश्वार बहुत। मुंह के मीठे मन के खोटे जान के वो दुश्मन निकले, इस नगरी में जिनको हमने समझा था गमखार बहुत। जिन आंखों में डूब के हमने चाहा था सुख पा लेंगे, जिन आंखों में डूब के हमने चाहा था सुख पा लेंगे, सुख पाएंगे उन आंखों में डूब के हमने पाए हैं आजार बहुत। किस्मत से मिलता है साहिल उम्मीदों की कश्ती को, साहिल से साहिल तक वरना फैले हैं मंझधार बहुत। आपके गीतों की दुनिया में बात अनोखी है प्यारे, हैं
आपके गीतों की दुनिया में बात अनोखी है प्यारे शोरा, इस रंग में कहने वाले देखे हैं फनकार बहुत। दोबारा से पढ़ता हूँ, आपके गीतों की दुनिया में बात अनोखी है प्यारे शेर, इस रंग में कहने वाले देखे हैं फनकार बहुत। बहुत शुक्रिया आपका ताहिरा मसूद, खूबसूरत पोइट्री आपने इनायत की। मैं उम्मीद करूंगा कि आप कुछ और भी हमें ज़रूर भेजेंगी। अली रज़ा राना, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह बहुत खूब प्रोग्राम, पहली बार आरजे अली रज़ा राना FM 101 हैदराबाद। आरजे आप तो आरजे हैं, फिर हम भी तो आरजे हैं, तो ये तो एक ताल्लुक, एक तो लिस्टर का ताल्लुक, ऊपर से आरजे का ताल्लुक। बहुत अच्छा लग रहा है आपका मैसेज पढ़ के, आपका पार्टिसिपेशन देख के। FM 101 हैदराबाद से आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो FM 101 की फैमिली के आप मेंबर हैं, तो आरजे अली रज़ा राना आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं और प्रोग्राम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। अगर कुछ और हमें भेजेंगे तो हम उसे भी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ओके जी, हमारी आरजे वजीहा आसिम का हम तक मैसेज पहुंचा है, इन्होंने कहा कि शो इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया वजीहा आसिम, आज आपका शो मैंने सुना था सुबह, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत एनर्जेटिक, क्या बात है। और लाइव कॉल्स का सिलसिला भी आपका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा था आपका शो। थैंक यू वेरी मच कि आप इस वक्त मेरे प्रोग्राम को सुन के आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है, बहुत शुक्रिया आपका। माजुबी कहती है कि अस्सलाम वालेकुम आरजे वसीम, बहुत शुक्रिया माजुबी आपका, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अभी पिछले प्रोग्राम में आप गायब थी, हमने आपको बहुत मिस किया कि आपकी ना कमेंट हम तक पहुँचेंगी, आपकी पोइट्री हम तक पहुँचेगी, मगर आपकी पोइट्री हम तक नहीं पहुँची। आतिफ अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, लिसनिंग फ्रॉम UAE अबू धाबी। बहुत शुक्रिया आतिफ अली आपका, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप यकीनन आपको भी शायरी का शगफ होगा, तो तभी आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और इतनी दूर से शामिल हो रहे हैं। मरीना ए लिखा हुआ है इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम आरजे वसीम, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर। बहुत शुक्रिया मरीना आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी ज़रूर पोइट्री भेजेंगी। मरीना ने कहा है कि बारिश की वजह से मौसम बेहतर हुआ, तो बारिश की वजह से लाइट बहुत तंग करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारी याद मुझे बहुत तंग करती है, इसी तरह हम जब लाइट जाती है तो हम उसको बहुत याद करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैंने नहीं आना, मुझे बहुत तंग करते आप मुझे बहुत याद करते हैं, जिसको बहुत याद करते हैं वही तो तंग करता है ना, ऐसे ही है ना। ओके जी मरीना, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कैसरा हमारे प्रोग्राम में शामिल है, तमाम सुनने वालों को सलाम, आपका आना बहुत अच्छा लगा, अच्छा सा गाना सुना दीजिए, ज़रूर सुनाएंगे। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में कुछ और लोग शामिल हुए हैं, उनमें शामिल है जनाब फौजिया लाहौर से, तमाम सुनने वालों को सलाम, आपका आना बहुत अच्छा लगा, आपका शो मैं सुन रही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, आप सुन रही हैं तभी तो आपने हमें याद किया है। आपके कुछ SMS भी हम तक पहुँचे हैं, और SMS ज़रूर किया कीजिए, थोड़े से पैसे आपके लगते हैं मगर मैसेज SMS के पढ़ने का बड़ा ही लुत्फ़ आता है। और ये हैं हुसनैन अहमद, मुल्तान बाबर रोड टॉम मोजी बोला सागू गी, तो ये भूल है तुम्हारी, तो ये भूल है तुम्हारी, मैं ख्यालों में मिलूं के सोच हो तुम्हारी, तुम फिरोगे तशना, तो मैं प्यास हो तुम्हारी, मैं बिन रहूंगी तन्हा, तो आस हो तुम्हारी, बस मुझे को चाहना है कि चाह। अच्छा, आपने रोमन में लिखा है तो उसका सारा जो है ना वो रिदम आपके शेर का जो है ना वो आउट हो गया है, तो कोशिश कीजिए कि मुख्तसर लिखिए ताकि और उसको आसानी से पढ़ा जा सके। तुम्हारी जिंदा हूँ जिस सहारे में, वो सांस हो तुम्हारी और साइमा। अच्छा,
یہ جی پورا مکمل کیا. عبد النور ہاشمی رواز گارڈن لاہور سے ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں, بہت شکریہ. حسنین احمد ملتان سے آپ نے یہ میسج کیا ہے تو آپ کو بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. مگر آپ نے جو ٹائپ کیا ہے نا اس میں کافی ساری کچھ غلطیاں ہیں جو مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی, کوشش کیا کیجئے کہ اس کو اچھی طرح سے ٹائپ کریں تاکہ میں اس کو پڑھ سکوں. رومن میں آپ لکھتے ہیں نا انگریزی میں. آگے اگلا میسج ہے جناب, مائی نیم سکندر حیات, کائنڈلی کین یو پلے کوک اسٹوڈیو, آج جانے کی ضد نہ کرو. اوکے جی, میں نے نوٹ کر لیا, آپ نے سننا چاہا جانے کے, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. آج جانے کی ضد نہ کرو, آج جانے کی ضد نہ کرو, یوں ہی پہلو میں بیٹھے رہو. آج جانے کی ضد نہ کرو. کیوں جی, ٹھیک ہو گیا نا, میں نے آپ کو سنا ہی دیا نا, اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو جو آپ نے فرمائش کی ہے وہ بھی آپ کو ضرور سنا دیں. ورنہ ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن, فریدہ خانم کی آواز میں آپ نے یہ گیت اوریجنلی, یہ غزل فریدہ خانم نے ہی گئی ہے مگر کوک اسٹوڈیو میں اس کے دوبارہ سے گایا گیا ہے اور پیکچرائز کیا گیا ہے, تو ہم آپ کے لیے یہ خوبصورت غزل پروگرام میں شامل کرنے جا رہے ہیں. سنتے رہیے ایف ایم 101 اپنے میزبان وسیم احمد کے ساتھ. آپ کے ایس ایم ایس کا, آپ کے فیس بک کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا, آپ کی محبتوں کا مجھے انتظار رہے گا, اور محبتوں کا انتظار کرتے رہنا چاہیے. آج کے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے, کیا محبت انسان کو آزاد کرتی ہے یا کسی ایک شخص کا اسیر بنا دیتی ہے؟ کوئی ہمیں اپنی محبت میں اپنا قیدی بنا لیتا. آج کے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے, کیا محبت انسان کو آزاد کرتی ہے یا کسی ایک شخص کا اسیر بنا دیتی ہے؟ کوئی ہمیں اپنی

आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। हाय मर जाएंगे हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग, जिनको सुन के बंदे का दिल चाहे कि मैं कहीं मर जाऊं मिट जाऊं। और अगर जिससे मोहब्बत हो प्यार हो, जब वो उसके जुदा होने का वक्त होता है, उसको तो बर्दाश्त करना शायद बहुत ही मुश्किल बात होती है। एनीवेज पंजाबी जी कहते ने वो तन जाने जिस तन लगे, मतलब वो वही महसूस कर सकते हैं जिसके साथ वो बीत रही होती है। अनीला जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई, हमारी बहुत अच्छी लिस्टनर, हमारी बहुत अच्छी बहन, और इन्होंने कहा कि जी गुड शो, पोइट्री नाइस है, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका अनीला जी, आपका आना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लिस्टनर्स आपकी जो लाइव कॉल होती है उसको सुनने की उम्मीद करते रहते हैं, तो आज तो टेलीफोन ही बंद पड़ा हुआ है, तो कोई टेक्निकल इशू हो गया, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर बातचीत होगी, और अल्लाह ताला खैरियत रखे ताकि, और लाइव कॉल्स भी और सिलसिला भी शुरू हो जाए, मतलब टेलीफोन ठीक हो जाए।

तो उसके साथ साथ अनिल जी आपका अगेन बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से मोहम्मद शहजाद हमारे प्रोग्राम में शामिल, उनका पैगाम पहुँचे हम तक, कह रहे कि जी आपका प्रोग्राम हम सुन रही हैं। तो उल्फत की नई मंजिल को चला तू बाहें डाल के माँ, उल्फत की नई मंजिल को चला

के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में उल्फत की। क्या बात है, आज तो मैं सिंगर हो गया हूँ। चले एनीवेज, आपको दो गाने मैंने सुना दिए, अब मैं और नहीं गाऊंगा, आपको मजीद बोर नहीं करूंगा। कुछ लोगों को एतराज़ हो जाता है कि आप ये गाने गाने बैठे हुए यहाँ पे, तो जनाब गाने नहीं गाएंगे, गाने सुनाएंगे। तो मोहम्मद शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपने हमीद अब्दुल हमीद फरूकाबाद वाले को सलाम भेजा है और तमाम सुनने वालों को सलाम भेजा है, नीला जी को भी सलाम भेजा आपने। मोहम्मद शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम में शामिल करेंगे जनाब एक खूबसूरत सा कलाम और उसके बाद मज़ीद आपके पैगाम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो सुनते रहिए 101 FM पाकिस्तान, आपका अपना फैम स्टेशन। कहते हैं कि कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग, यकीन मानिए ऐसा अजीब दौर आ गया है कि हमें हैरानगी होती है ऐसी बातों को सोच के, ऐसी बातों को करके, ऐसी बातों को सुन के, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रिश्तों को निभाने के लिए, कुछ रिश्तों को निभाने के लिए लोग पूरी ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। मतलब इसे कहते हैं मुनाफकत की इंतहा, पूरी ईमानदारी के साथ बेईमानी करते हैं, अंदर से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई खलूस नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है, मगर अपने वक्त को, जो वक्त उस वक्त मौजूद है, उसको गुजारने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए पूरी ईमानदारी से यकीन दिलाते हैं कि हम आपके हैं, आपके लिए हैं, मगर अंदर से वो कुछ और होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कदम कदम पे फूंक फूंक के चलिए।

कुछ लोग कहते हैं कि हाँ आपने पूछा ना कि आपको हमसे प्यार है, उन्होंने आगे से जवाब दिया हाँ, उसके बाद कहा नहीं, क्या आपने भी कहा क्या, फिर उन्होंने कहा हाँ नहीं, मतलब कुछ कभी हाँ कभी ना, आपको मतलब दरमियान की कैफियत जो होती है ना वो उस पे उसको टांग के रखा होता है वहां पे। आवारगी में मोहसिन उसको भी हुनर जाना, आवारगी में मोहसिन इसको भी हुनर जाना, इकरारे वफा करना फिर उससे मुकर जाना। आवारगी में मोहसिन उसको भी हुनर जाना, इकरारे वफा करना फिर उससे मुकर जाना, जब ख्वाब नहीं कोई क्या उम्र का तय करना, जब ख्वाब नहीं कोई क्या उम्र का तय करना, हर सुबह को जी उठना हर रात को मर जाना, शब भर के ठिकाने को एक छत के सिवा क्या है, शब भर के ठिकाने को एक छत के सिवा क्या है, क्या वक्त ये घर जाना क्या देर से, क्या वक्त पे घर जाना क्या देर से घर जाना, ऐसा ना हो दरिया में तुम बारे गरा ठहरो, ऐसा ना हो दरिया में तुम बारे गरा ठहरो, जब लोग हो ज्यादा कश्ती से उतर जाना, सुकरात के पीने से क्या मुझ पे आया होता, खुद जहर पिया मैंने तब उसका असर जाना, सुकरात के पीने से क्या मुझ पे आया होता, खुद जहर पिया मैंने तब उसका असर जाना, जब भी नजर आओगे हम तुमको पुकारेंगे, कबल गौर शेर है, जब भी नजर आओगे हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना चाहो तो गुजर जाना, जब भी नजर आओगे हम तुमको पुकारेंगे, चाहो तो ठहर जाना चाहो तो गुजर जाना। और साहब अगर कोई बहुत ही दिनों बाद आपका बहुत ही प्यारा आपसे राब्ता करे, आपसे मिले, तो बहुत खुशी होती है कि आपसे मुलाकात हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको याद भी आए हों, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें महसूस करते हों, मगर यकीन मानिए जिनको आप याद करते हैं ना, आप जिस वक्त भी याद करते हैं आपकी जो वेव्स है ना माइंड की, दिमाग की, सोच की लहरें, अगर आपकी रूह उनकी रूह के साथ मिली है, यानी आप उनसे मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत तभी होती है जब आपकी रूह उनकी रूह के साथ मिल जाती है, उसमें हिस्सा डाल लेती है, रूह में जाके उसके साथ अटैच होती है, शुरू से अटैच होती है, सिर्फ उसको तलाश करना होता है, जब तलाश हो जाती है मिल जाती है, तलाश मुकम्मल हो जाती है, तो फिर वो उसके साथ जुड़ जाती है, चाहे आप कितनी दूर हो क्यों ना हो, कितने फासले पे क्यों ना हो, कभी मुलाकात हो कभी ना हो, कभी ज़माने गुजर जाए, महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, मगर आप उनके साथ अटैच रहते हैं, जब भी आप कभी उनको याद करते हैं या वो आपको याद करते हैं तो आपके दिल पे असर होता है, आपके दिमाग पे असर होता है, आप भी उनको याद करते हैं, सिर्फ वही नहीं आपको याद कर रहे होते, आप भी याद कर रहे होती हैं, ये सिलसिला मोहब्बत का चलता रहता है, चाहे कितनी दूर कितने फासले क्यों ना हो। क्या कह गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, क्या कह गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ ना पूछिए, क्या कह गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ ना पूछिए, झुकती हुई नजर से वो उठता हुआ सा इश्क, झुकती हुई नजर से वो उठता हुआ सा इश्क, उफ वो नजर वो इश्क, उफ वो नजर वो इश्क, मगर कुछ ना पूछिए, झुकती हुई नजर वो उड़ता हुआ सा इश्क, उफ वो नजर वो इश्क, मगर कुछ ना पूछिए, क्या कह गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ ना पूछिए।

ये कुछ पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है। अगला शेर पढ़ते हैं। कुछ फसानों में हकीकत ही झलक होती है, कुछ हकीकत से बना लेते हैं अफसाने भी। मेरे अशआर है तस्वीर तमन्ना सागर, इनकी आगोश में है दर्द के अफसाने भी। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आपने पोइट्री भेजी, मुझे अफसोस है कि सही तरह से मुझ तक नहीं पहुंची और कुछ लफ्ज़ गड़बड़ हो गए आपस में, तो कोशिश कीजिए दोबारा से भेजने की। ओके जी, एक दफ़ा फिर ताहिरा मसूद का बहुत सारा शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। माँ जब ही कहते हैं कि सुना है ज़मीन पर वही लोग मिलते हैं जिनको कभी आसमानों के उस पार रूहों के मेले में एक दूसरे की मोहब्बत मिली हो। सुना है जमीन पर वही लोग मिलते हैं जिनको कभी आसमानों के उस पार रूहों के मेले में एक दूसरे की मोहब्बत मिली हो, मगर तुम कि मेरे लिए नफरतों के अंधेरे में फंसती हुई रोशनी हो, लहू में रची, मगर मेरे लिए नफरतों के अंधेरे में हंसती हुई रोशनी हो, लहू में रची रगों में बसी, हमेशा सुकूत शबे गम में आवाज जां बन के चारों तरफ गूंजती हो। अगर आसमानों के उस पार रूहों के मेले में भी मिल चुकी हो तो फिर इस जमीन पर मेरी चाहतों के खिले मौसमों से गुरेजा, मेरी धूप छाओ से क्यों अजनबी हो। किताबों में लिखी हुई और कानों सुनी सारी बातें गलत है कि तुम दूसरी हो, कि तुम दूसरी हो। मोहसिन नकवी का कलाम आपने भेजा माजी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत इजाफा किया आपने हमारे प्रोग्राम में। और इसी तरह से उस्मान बिन इमदाद, जद्दा से सुन रहा हूँ, रात का ये वक्त और आपकी स्वीट सी आवाज़ परदेश में तन्हाई का सहरा है। शारा लिखा आपने, तन्हाई का सहरा है। ओके उस्मान बिन इमदाद, यकीन मानिए आपकी मैसेज ने मुझे थोड़ा सा उदास कर दिया है। अपने शहर से, अपने घर वालों से दूरी का जो एक फीलिंग है वो दिल को तड़पा देने वाली होती है, मगर हम आपके साथ मौजूद हैं ना, आपसे प्यारी प्यारी बातें करने के लिए, आपके प्यारी प्यारी बातों को समझने के लिए, आपके जज्बात को, एहसासात को महसूस करने के लिए। आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला ना समझिए। जिस तरह आपने लिखा ना, आपकी स्वीट आवाज़, अच्छी आवाज़, प्यारी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है रात के इस वक्त, तो यकीन मानिए रात की तन्हाई में आंखें बंद करके आप फील कीजिए कि आप हमारे पास मौजूद हैं, अपनी फैमिली के पास मौजूद हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मगर उदास मत होइएगा, उदासी जो होती है ना वो दिल को अजीब सा कर देती है और दिल परेशान हो जाता है, तो परेशानी का आलम नहीं आने देना है ना। आप सुनते रहिए 101 FM पाकिस्तान को, आपके साथ हमेशा हम जुड़े रहते हैं सुबह से रात तक, रात से लेके सुबह तक।

0: वो भी अपने अनर बने।
1: दिल भी गया हाथों से,
0: वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था न आना दिल का।

उनकी अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, जिंदगी गुजरी मगर दर्द ना जाना दिल का, कुछ नई बात नहीं हुस्न पे आना दिल का, मशगला है ये नहायत ही पुराना दिल का, वो मोहब्बत की शुरुआत वो बेथा खुशी, देखकर उनको वो फूले ना समाना दिल का, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, दिल लगी दिल की लगी बन के मिटा देती है, रोग दुश्मन को भी या रब ना लगाना दिल का, मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, बेठिकाने हैं बहुत दिन से ठिकाना दिल का, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, बेझिझक आके मिलो हंस के मिलाओ आंखें, बेझिझक हंस के मिलो, बेझिझक आके मिलो हंस के मिलाओ आंखें, आओ हम तुमको सिखाते हैं मिलाना दिल का, नक्श पर आप नहीं वहम नहीं ख्वाब नहीं, नक्श पर आप नहीं वहम नहीं ख्वाब नहीं, आप क्यों खेल समझते हैं मिटाना दिल का, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का, उनके अंदाजे करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल का। और वन एफ पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, नसीर अहमद नसीर की खूबसूरत पोइट्री आपने सुनी और गाई हुई भी सुनी बाय हावी, और मैंने भी पूरी जो गज़ल है आपको सुना दी, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जनाब इस वक्त हम आपके मज़ीद पैगाम की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। माई नेम इज़ आकाश फ्रॉम शादबाग लाहौर। जी भाई मुझे एक सच्ची वाली मोहब्बत हो गई किसी से, और तो वो कहीं हमारे आसपास ही मोहब्बत हो गई है कहीं इधर उधर गली गली के अंदर, मगर पूरे जो लोग हैं ना इर्द गिर्द के लोग वो नहीं चाहते कि हमारी आपस में शादी हो जाए। भाई साहब लोग जिसके साथ मैं मोहब्बत करता हूँ उसको मेरे बारे में गलत बातें बताते हैं। आप सब सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। लो जनाब दुआ करते हो ना वास्ते कि इनको जिनके साथ मोहब्बत हो गई है ना, जिस दिन मोहब्बत हो गई है उस दिन इन्हों का ब्याह हो जाए, है ना, ऐसे ही है ना। तो आकाश बहुत शुक्रिया आपका। तो आप ना उसका बेहतरीन शरीफाना तरीका ये है कि आप सीधे सीधे उनके घर में अपनी वालदा को या अपने बड़ों बुज़ुर्गों को भेजें ताकि वो उनसे आपके रिश्ते की बात करें और ताकि आपकी शादी हो सके। मगर ये कि खाली मोहब्बतों से जो है ना वो घर नहीं चलते। अगर आप कोई काम वाम करते हैं, कोई पैसे वैसे हर महीने कमाते हैं आपके पास आते हैं और घर चला सकते हैं घरदारी चला सकते हैं तो फिर तो ठीक है, वरना मेरा ख्याल है कि शायरी वारी सुन के ही दिल को खुश कर लिया कीजिए। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी सब लोगों के साथ दुआएं हैं, बल्कि सब लोगों से मैं कहूँगा कि जिनको जिनके प्यार जिनको अपने प्यार की तलाश है अपनी मोहब्बत की तलाश है उनकी मोहब्बत उनको ज़रूर मिले, और जो भी नेक ख्वाहिश होगी दिल में उस शर्त यह कि वो नेक होनी चाहिए, वो ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो। और तमाम लोगों से मैं दुआ करूँगा कि मेरे साथ ज़रूर शामिल हो जाएगा कि अल्लाह ताला सब की नेक ख्वाहिशें अच्छी ख्वाहिशें ज़रूर पूरी फरमाए, आमीन। आकाश बहुत शुक्रिया आपका, आपकी लव स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की उसका भी हंसवे से रहो के मतलब बिल्कुल रात के 3:36 में आपका ये पैगाम मुझ तक पहुँचे। आप तो वाकई जनाब बिल्कुल मोहब्बत में डूबे शख्स लग रहे हैं।
क्या क्या सही कहा ना मैंने, मरीना बिलाल कह रहा हूँ, मरीना ए लिखा हुआ इन्होंने, और इन्होंने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया है। और उस्मान माफ़ कीजिएगा, उस्मान बिन इमदाद, आपके परदेशियों के लिए एहसास और फीलिंग्स का बहुत शुक्रिया। अरे उस्मान बिन इमदाद कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे दिल के करीब हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। और आपने कहा कि आपकी जो फीलिंग्स हैं परदेशियों के लिए, उसके लिए शुक्रिया, आपने ठीक फरमाया। FM 101 पाकिस्तान हमारी फैमिली की तरह है, अपने मुल्क अपने शहर से आने वाली आवाज़ दिल के सुकून का सबब और अपनाइयत का एहसास दिलाती है। हमेशा आपका रेगुलर लिसनर हूँ, गॉड ब्लेस यू आरजे वसीम भाई, बहुत शुक्रिया उस्मान इमदाद, उस्मान बिन इमदाद, आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप खैर खैरियत से वहाँ पे रहें, खैर खैरियत से वापस आएँ। और हमारे अगर जब आएँ तो हमसे मिलने के लिए भी आएँ, ठीक है ना, तो दिल को मजबूत रखें इंशाल्लाह। आजकल तो कोई मसला ही नहीं है, उधर से आप टिकट कटवाएंगे हवाई जहाज़ की, उसमें बैठेंगे और थोड़ी देर में 2-4 घंटों में जितना भी टाइम ड्यूरेशन है आपकी फ़्लाइट का, उसमें बैठेंगे तो आप माशाल्लाह से पाकिस्तान आ जाएंगे अपने घर वालों के पास, हमारे पास। तो बिल्कुल आप इजी रखें अपने आप को, उदास मत हुआ करें, खुश रहा करें। अवान ज़्यादा ने कहा कि जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अवान ज़्यादा जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अवान ज़्यादा ने पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में कॉल किया, बहुत शुक्रिया। माजी भी अस्सलाम वालेकुम। आरजे वसीम बहुत शुक्रिया। ताहिरा मसूद आपका बहुत शुक्रिया। महजबी आपकी पोइट्री का बहुत शुक्रिया, आपकी दूसरी पोइट्री अभी तक नहीं पहुंची, अपने कहा इतनी सारी शायरी, हाँ एक और पहुंची है, इसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हम उनको छीन कर लाए हैं कितने दावेदारों से, माजवी ने ये पोइट्री भेजी है। हम उनको छीन के लाए हैं कितने दावेदारों से, हम उनको छीन के लाए हैं कितने दावेदारों से, शफक से चांदनी रातों से फूलों से सितारों से। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। शफक से चांदनी रातों से फूलों से सितारों से, हमारे जख्म दिल दागे जिगर कुछ मिलते जुलते हैं, गुलों से गुलरुखों से। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमारे जख्म दिल दागे दिल कुछ मिलते जुलते हैं, गुलों से गुलरुखों से महविशों से महापारों से। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। जमाने में कभी भी किस्मतें बदला नहीं करती, जमाने में कभी भी किस्मतें बदला नहीं करती, उम्मीदों से भरोसों से दिलासों से सहारों से। सुने कोई तो माफ कीजिएगा, सुने कोई तो अब भी रोशनी आवाज देती है, सुने कोई तो अब भी रोशनी आवाज देती है, घटाओं से पहाड़ों से बयाबानों से गारों से। ओके जी, गुफाओं से पहाड़ों से बयाबानों से गारों से, बराबर एक प्यासी रूह की आवाज आती है, कुओं से पन घुटों से नदियों से आबशारों से। बराबर एक प्यासी रूह की आवाज आती है, कुओं से पन घुटों से नदियों से आबशारों से। कभी पत्थर के दिल कह पिघलते हैं न पिघलेंगे, मनाजातों से फरियादों से चीखों से पुकारों से। ब्यूटीफुल अजबीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपके पैगामात का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपके पैगामात जो आ रहे हैं, और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अभी हमारे पास अभी तकरीबन 15-20 मिनट हैं तकरीबन,
تو آپ بھی اپنے ایس ایم ایس ہمیں بھیج سکتے ہیں, اپنے پیغامات ہم تک بھجوا سکتے ہیں, اپنے کومنٹ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کومنٹ کرنے کے لیے آپ فیس بک پہ آئیں گے, جس کا پتہ ہے www.facebook.com/fm11lahore. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرام میں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. 101 لکھیے, اسپیس دیجیے, اپنا پیغام لکھیے, بھیج دیجیے 4471 پہ, یعنی 4471 پہ. جیسے آپ کے پیغامات ہم تک پہنچیں گے بہت اچھا لگے گا, اور پروگرام کی ویلیو بالکل بڑھ جائے گی, بالکل بڑھ جائے گی. آپ کے آنے سے روزی رضوانہ حسن علی نے اور عاطف علی نے, طاہرہ مسعود نے, مرینہ اے نے, مہاجمین نے, علی رضا رانا نے ہمارے پروگرام کو لائک کیا ہے. آپ کا بہت شکریہ تمام لوگوں کا پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, پروگرام میں شامل ہونے کا. تو آج کے پروگرام کا جو فارمیٹ تھا وہ یہ تھا, کیا محبت انسان کو آزاد کرتی ہے یا کسی ایک شخص کا اسیر بنا دیتی ہے؟ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ ضرور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. میں نے دونوں طریقے بتا دیے, آج ٹیلی فون نہیں ہو سکتا تو ہم آپ کو کہیں گے کہ جناب ٹیلی فون کا انتظار مت کیجئے, بلکہ آپ ہمیں ایس ایم ایس کر دیجئے. اور عوان زادہ نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو گاڑی میں سن رہا ہوں. بہت شکریہ, اور عوان زادہ آپ کا بہت شکریہ. آپ یہ تو بتائیے آپ کہاں سے آ رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, کس شہر میں ہیں, کس روڈ پہ ہیں, ہمیں یہ بھی تو بتائیے نا تاکہ اچھا لگے ہمیں آپ کا. سامنے لکھتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھے رہو گے تو دل کو قرار آئے گا. واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سامنے بیٹھے رہو گے تو دل کو قرار آئے گا, جتنا دیکھیں گے تمہیں اتنا ہی پیار آئے گا. واہ واہ واہ عوان زادہ, کیا بات ہے, بہت شکریہ. اور سارم عوان اسلام آباد, اچھا اسلام آباد سے جناب انہوں نے یہ خوبصورت شعر بھیجا ہے. سامنے بیٹھے رہو گے تو دل کو قرار آئے گا, جتنا دیکھیں گے تمہیں اتنا ہی پیار آئے گا. اوکے جی. اور عوان زادہ نے آگے کہا کہ کیسے ہیں سر, شکر اللہ کا آپ سن رہے ہیں مجھے, آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو تبھی تو آپ نے مجھے پیغامات بھیجے ہیں, بہت شکریہ جناب. اور تمہیں اتنا ہی پیار آئے گا. اوکے جی. اور عوان زادہ نے آگے کہا کہ کیسے ہیں سر, شکر اللہ کا آپ سن رہے ہیں مجھے, آپ کو اچھا

नशे नज़र इनायत की गिरा खुलने लगी, दिल कहीं दर्द कहीं दिल की रफ्तार कहीं, क्या मिला सेरे गुलस्तां से उदासी के सिवा, गुले सच्चा कहीं नरगिसे बीमार कहीं, देखना हल्का गर्दाम से बचते बचते छूटे जाए ना इसी हाथ में पतवार कहीं, डर है रख दे न कहीं दिन वो हथेली पे मेरी, हरफे असमात में लिपटा हुआ इनकार कहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमने आंखों को रहन रख दिया ख्वाबों के इवज़, तुमने देखे हम भला ऐसे खरीदार कहीं। वाह जी वाह, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। मॉर्निंग एफएम पाकिस्तान, आपका अपना फैमिली स्टेशन, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम अहमद आपके साथ 3:45। गोके कॉल्स कल सिलसिला नहीं है, मगर आपके लिए पोइट्री हमारे पास मौजूद है और आपके पैगामात जो हैं वो प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अभी भी हमारे पास टाइम है 15 मिनट, तो आप उसमें हमें अपनी जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर भिजवाइए। अगर कोई फरमाइश भी करना चाहते हैं तो कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश भी प्रोग्राम में हम शामिल कर लें। तो अभी एक फरमाइश हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे मेहदी हसन की आवाज़ में, और कलाम सागर सदीकी का रिक्वेस्ट किनकी है जी, रिक्वेस्ट है अब्दुलनूर हाशमी साहब की। पेशकश बनो एफएम पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन की, हमारे साथ रहिए।

कह गई किसी की नजर कुछ न पूछिए, क्या कह गई किसी की नजर कुछ न पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए, क्या कह गई किसी की नजर कुछ न पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए, झुकती हुई नजर से वो उठता हुआ सा इश्क, झुकती हुई नजर से वो उठता हुआ सा इश्क, उफ वो नजर वो इश्क मगर कुछ न पूछिए, क्या कह गई किसी की नजर कुछ न पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए, झुकती हुई नजर से वो उठता हुआ सा इश्क, उफ वो नजर वो इश्क मगर कुछ न पूछिए, वो देखना किसी का कनखियों से बार बार, वो बार बार उसका असर कुछ न पूछिए, वो देखना किसी का कनखियों से बार बार, वो बार बार इसका असर कुछ न पूछिए, रो रो के किस तरह से कटी रात क्या कहे, रो रो के किस तरह से कटी रात क्या कहे, मर मर के कैसे की है सहर कुछ न पूछिए, अख्तर दियारे हुस्न में पहुंचे हैं मर के हम, क्यों कर हुआ है तय ये सफर कुछ न पूछिए, क्यों कर ये तय हुआ है सफर कुछ न पूछिए।

ऐ शमा कुए जाना है तेज हवा माना। ऐ शमा कुए जाना है तेज हवा माना, लो अपनी विचार रखना, रस्तों पे निगाह रखना। ऐसे ही किसी शम में आएगा यहाँ कोई, कुछ जख्म दिखाने को, एक टूटा हुआ वायदा मिट्टी से उठाने को। पैरों पे लहू उसके, आंखों में धुआं होगा, चेहरे की दराड़ों में बीते हुए बरसों का एक एक निशान होगा। बोलेगा ना कुछ लेकिन फरियाद गुना होगा। पैरों पे लहू उसके, आंखों में धुआं होगा, चेहरे की दराड़ों में बीते हुए बरसों का एक एक निशान होगा। बोलेगा ना कुछ लेकिन फरियाद कुना होगा। ऐ शमाए कुए जाना वो खाक बसर राही, वो सोखता परवाना, जब आए यहाँ उसको मायूस ना लौटाना। हो तेज हवा कितनी, लो अपनी बचा रखना, रस्तों पे निगाह रखना, राही का पता रखना। इस भेद भरी चुप में एक फूल ने खिलना है, उसने उन्हीं गलियों में एक शख्स से मिलना है। दश्त-ए-तन्हाई में या जाने जहां।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।